0: सरसों के तेल लगाने से मेरे ख्याल से भी गर्म बदन को भी गर्म रखता है
1: ऐसा।
0: हाँ हम इस्तेमाल करते हैं, हमने सुनी है किसी ने कहा है, तो हमने जब घर से निकलती हूँ ना ये सर्दी के मौसम में, तो मैं अपने ये इसको कैसे कहते हैं घुटनों को मैं उसमें लगा लेती हूँ और पैर में भी लगा देती हूँ, तो सर्दी या ठंड कम लगती है।
2: अच्छा।
0: हाँ
1: तो दोस्तों ये भी अपना और संदेश जो शांता जी भी इसे प्रयोग करते हुए और हम सबको और अपना संदेश को बांट रहे, तो हमें भी इस पे ध्यान देना चाहिए। पर शांता जी ऐसा और कौन सा संदेश है उस पे ध्यान देना चाहिए बबली?
0: निद्रा, हमने ख्याल से निद्रा
2: हाँ
0: निद्रा जाने के
2: नींद। हाँ जी
0: बबली जी,
2: दिन में जब भी विश्राम करें तो दाहिनी करवट लेकर सोएं और रात में बाईं करवट लेकर सोएं। दाहिनी करवट लेने से बायां स्वर अर्थात चंद्र नाड़ी चलेगी और बाईं करवट लेने से दाहिना स्वर अर्थात सूर्य स्वर चलेगा।
1: यानी कि इस प्रकार को सोना चाहिए,
0: दाहिने यानी कि रेखतर और बाएं लिंकर।
1: तो दोस्तों जैसे कि
0: दाया बाया
1: हाँ लिंकर कांत और रेखतर कांत पे लेटना चाहिए ताकि आपका शरीर जो है उसमें कोई प्रकार के, क्योंकि देखो यहाँ भी संदेश भेज दिया गया है कि शांता जी, क्योंकि मनुष्य के संपत्ति ना दौलत है ना उनका जायदाद होता है, उसके संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार, अच्छे स्वस्थ शुभचिंतक मित्र और स्वयं की संतुष्ट मन होता है। तो इस बातें पे हमें ध्यान देते हुए आगे का संदेश क्या है बबली जी?

0: आगे का संदेश है तांबे का पानी।
1: तांबे का पानी,
0: रात को तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह उठते बिना कुल्ला किए यानी बिना मुंह धोए निरंतर ऐसा करने से आप कई रोगों से बचे रहेंगे। तांबे के बर्तन में रखा पानी गंगा जल से भी अधिक शक्तिशाली माना गया है।
1: तो तांबा किसको कहते हैं शांता जी?
2: तांबा कहते हैं जो हम आजकल यहाँ पे दुकानों में देखते हैं ना, कोपर नहीं, कोपर को पीतल कहता है ना
1: जी,
2: कोपर को पीतल कहते हैं। और कोपर से अगर एक साथ में कभी देखना फर्क है, तांबा, तांबा एक लाल रंग के होता
0: सही
2: है।
0: सही बोला शांता जी,
2: लाल रंग का होता है और वो भी थोड़ा सख्त है मटेरियल में, वो थोड़ा सख्त है दान कोपर से, तो उसको तांबा कहते हैं।
0: हाँ,
2: और उसमें आपने कहा पानी ढरना रात में।
0: हाँ जी, रात को पानी रख के और सुबह उठते हुए कुल्ला किए बगैर उसे पीना चाहिए,
2: उसे पी लेना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: पर तादाद कितना होना चाहिए, ढेर होना चाहिए या थोड़ा होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए?
0: ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही होना चाहिए।
1: क्योंकि दोस्तों तांबा एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा वस्तु है जिसमें आप जल धर देंगे, क्योंकि तांबा में आप दूध नहीं रख सकते हैं शांता जी मेरे ख्याल से।
2: मुझे नहीं पता क्यों।
1: क्योंकि ऐसा होता है कि मंदिरों में, हम सब मंदिरों में जाते हैं तो कभी पंचामृत तांबा के उसमें नहीं रखा जाता।
2: वो क्यों?
1: क्योंकि वो कहते कि वो
0: दूध को खराब कर देते,
1: दूध को खराब कर देते। और खास करके एक बात, मैं एक बार हरिद्वार में थे, तो हरिद्वार में वहाँ आप सस्ते में लगा रहा होगा कि लोटा बिकता है ना, कभी काल के हम लोग यहाँ से भी जाते तो सस्ता माल वहाँ खोजते हैं, तो हरिद्वार में आपको सबसे सस्ता सस्ता मिल जाएंगे। पर उसमें ये होता है कि वो कहेंगे, कहते हैं आप नहीं पूछेंगे कि तांबा का कलर रहता है, पर तांबा असलियत वाला नहीं होते, क्योंकि तांबा ऐसा मटेरियल है, ऐसा वस्तु है जिसे मखनीत नहीं खींच सकता है। उसे जब मखनीत खींचे तो यान ले उसमें मेताल देल है, मेताल देल नहीं होना चाहिए। तो मखनीत लगा करके आप देख सकते हैं कि तांबा असली है या नहीं, क्योंकि जब तांबा असली होगा तो मखनीत उसे नहीं खींच पाएंगे।
2: अच्छा,
1: और तांबा का जैसे कि हमारे मिंट होते हैं ना
2: जी,
1: तो फाइव सन जो हमारा होता है ना वही कलर का
2: जी,
1: तो ऐसा ही देखना चाहिए कि तांबा उसी का रंग का होता है।
2: और जैसे मुझे भी पता है ये सोना भी ना, सोना में भी ये प्रयोग होता है,
1: तो उसे मिला देते हैं तब वो थोड़ा
2: पहने लायक हो जाता। हाँ, है सजाए लायक हो जाता है,
1: सजाने यानी कि सी रात बनाने लायक हो जाता है। तो दोस्तों हम सब जो आज के विषय, हम बबली जी विषय का नाम एक बार फिर आप बोल दो तो हम सब आगे बढ़ेंगे।
0: निरोगी काया घरेलू उपचार,
1: यानी कि अपने निरोगी काया के लिए घरेलू चीजों को प्रयोग करना। शांता जी ऐसा करते हैं कि एक गीत की ओर बढ़ते कि हम सब एक और सुना सकते हैं।
2: बढ़ सकते हैं, पर हमने अभी तक जितने कहा ये सब उपाय, ये सब घर में हमारे उपस्थित है, हमें अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा।
1: सही बात, सही बात। ये सब चीज़ें जो है जो हम अपने घर में, हमारे घर से रहते हैं और हम उसे प्रयोग करके उसे लाभदायक यानी कि उसे अपने शरीर के लिए, अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। दोस्तों हम एक सुंदर से गीत जो शांता जी तैयार करके रखे हुए उस ओर बढ़ेंगे।

0: सुंदर गीत को हम सब सुने और अपने शरीर को, अपने जो कहा जाता कि निरोगी काया के लिए घरेलू उपाय, हम सब जो आज के संदेश लेकर के आपके लिए आए हैं, तो शांता जी इस पे आपको क्या कहना है, और क्योंकि हमें और भी संदेश के ओर बढ़ना है।
1: तो मैं ये कहूँगी कि प्रभु को याद करो मन की कक्ष में, प्रभु को याद करो मन की कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। हाँ सुनने वालों,
0: अच्छा संदेश सुनाई आपने। बबली जी, आपका आगे का संदेश क्या है, क्योंकि शांता जी ने कह ही दिया है कि प्रभु का याद करना है
1: मन की कक्ष में,
0: मन के कक्ष में,
1: तो फिर फैसला होंगे आप ही के पक्ष में।
0: ये कहावत ही बड़ा सुंदर संदेश है जो आपने सुनाए, थोड़ा से इसे और निचोड़ दीजिए।
1: मन की कक्ष में, जिस ध्यान में धरो,
0: ध्यान धरो,
1: प्रभु को याद करो मन की कक्ष में, फिर प्रभु आपको जरूर सुनेंगे और फैसला ही करेंगे आप ही के पक्ष में।
0: और ये भी हम जानते कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और बबली जी ये बताइए कि हमें तांबा के, जो आपने बता ही चुका है कि तांबा का वो नहीं जरूरत होना है कि एक लोटा होना है या थाली रख सकते हैं ना, कोई भी चीज में रख के।
2: हाँ जी, किसी भी चीज में पानी
0: तांबा का रहे।
2: हाँ, बस तांबे का हो।
0: तो आगे का संदेश क्या है?
2: आगे का संदेश है सौंट।
0: सौंट ये जो हम पहनते हैं?
1: नहीं, ये लो कर लो बात, वो सौंट नहीं। हमारे सुनने वालों, सरनाम के सुनने वालों ये तुरंत जान गए होंगे कौन से सौंट हम कहते हैं।
0: शांता जी बस रेडियो बनाना है तो मैं कुछ ना कुछ छोड़ ही देता हूँ।
1: हाँ, सौंट कहते हैं खद्रोख द द्रोख खैम्बर,
0: खैम्बर को।
2: हाँ जी,
0: तो ये खैम्बर को कहते हैं सौंट। ये तो हम लोग छोटे पे भी प्रयोग किया करते थे ना शांता जी।
1: हाँ, जब हम लोग
0: कब प्रयोग होता था ये तो भूल गया।
1: मम्मा लोग जब बनाते थे कैसे कहते, बीस मेलक को
0: फेनूस
1: जो बनता था,
0: डाला जाता था सोंट।
1: सोंट, हाँ,
0: और उसे तभी प्रयोग किया जाता था। और भी कुछ कार्य में प्रयोग होता था?
1: वैसे मेरे को पता नहीं है। वैसे
0: नहीं, मैं तो
1: पहले चाय, उसको तो हमने यहाँ पर सीखी,
0: चाय इलायची आदि तो हम सब जरूर
1: यहाँ पर सीखी, पर ये सौंट तो हम सीखे वहाँ पे बीस मेलक में, यानी कि फेनूस
0: में।
1: जी तो, और आप बबली जी?
2: हमारे जैसे बुखार हुआ, जुखाम हुआ या कफ से बचने के लिए आधा चम्मच सौंट और जरा सा गुड़ एक गिलास पानी में मिलाइए और उसे उबालने के लिए रख दिए, और तब तक उबालिए जब तक वो आधा ना रह जाए।
1: अच्छा,
2: और रात को सोने से पहले यह पानी पिए।
0: तो ये गुड़ तो मीठा कर देंगे ना?
2: हाँ, तो सौंठ थोड़ी कड़वी होती तो।
0: अच्छा,
2: हाँ, तो बदलते मौसम में जैसे सर्दी है, बारिश है
1: जी,
2: तो इसका सेवन करने से रोगों से बचा जा सकता है।
1: बात तो सही है।
0: तो ये ज्यादा तादाद में ठंडी में प्रयोग?
2: हाँ जी, ऐसे मौसम में प्रयोग कर सकते हैं,
1: तो इम्यूनिटी जो है देह के वो भी बढ़ते हैं।
0: हाँ, तो आगे का कार्यक्रम में
1: ये झूर वाला जो है ना, जो हमने कहा सोट, तो हाँ, खैम्बर जो झूर वाला उसका सोट कहते हैं।
2: हाँ जी शांता जी,
1: और जो कच्चा है उसे खैम्बर यानी कि अदरक कहते हैं।
2: हाँ जी, सही बात बोला आपने।
1: हाँ, जो कच्चा है, जो झूर नहीं है, तो इसमें फर्क है। जो कच्चा है उसको अदरक यानी कि खैम्बर हम यहाँ कहते हैं, और जो झूर वाला है जो अलग से है, ऐसे पाकी में आओ तो उसे सौंट कहते हैं।
2: क्योंकि अदरक ताजा होता है और सौंट थोड़ी सुखा के रखते हैं तो वो थोड़ी द्रोह हो जाती है, तो सूखी
1: जी। हाँ जी। जैसे कहते हैं हल्दी, हल्दी भी कच्चे वाला होता है और सूखा वाला भी होता है।
2: हाँ सही बोला आपने,
1: हमने बाजार में देखी कच्चा हल्दी।
0: चलो तो आगे का कार्यक्रम, पहले हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे शांता जी, और फिर आगे का कार्यक्रम बनाया जाएगा।

0: सुंदर गीत को हम सब सुने और दोस्तों यहाँ से हम जो कार्यक्रम चल रहा है टेलीफोन भी आते रहते हैं और हम सब कुछ ना कुछ संदेश कोशिश करते हैं टेलीफोन जो आते हैं तो आपके साथ में जोड़ने के लिए। पर बबली जी अगला संदेश क्या है?
1: अगला संदेश है टाइफाइड। टाइफाइड एक बुखार का नाम है।
0: बुखार का नाम?
1: हाँ जी। चुटकी भर दाल चीनी की फांकी, चाहे अकेले ही चाहे शहद के साथ, दिन में दो बार लेने से टाइफाइड बुखार नहीं होता।
0: ऐसा?
1: हाँ जी।
0: तो टाइफाइड और एक बुखार होता है। शांता जी आप इसके बारे में कभी सुने थे?
2: मैं तो यहाँ पे मेरे को आज भी हमारे सुनने वालों के साथ साथ मेरे को यहाँ पे बहुत सा जानकारी आज भी मिल रहे हैं।
0: तो टाइफाइड और इससे कैसे बच सकते हैं बबली जी?
1: दालचीनी की फांकी। दालचीनी एक भोजन मसाला है जिसको भोजन में भी प्रयोग किया जाता है, उसको दालचीनी कहते हैं।
2: दालचीनी कार्डमोन कनेल को कहते हैं दालचीनी, पर यह चालचीनी वो पुदर फॉर्म में भी होता है और स्टॉक में भी होता है।
1: हाँ जी हाँ जी, सही बताया आपने। उसको चाहे वैसे ही उसको मुंह में डाल लें, चबा सकते हैं, या अगर उसके पाउडर बना के और शहद के साथ दिन में दो बार लेने से टाइफाइड बुखार नहीं होता।
2: दस मैंग सलमा का फन कनेल एंड होनिंग ओके मिलाकर तो उसको भी आप प्रयोग कर सके हैं दिन में दो बार।
1: हाँ दिन में दो बार।
2: हाँ तो उस अच्छा हाँ ये तो भी बहुत अच्छा है टाइफाइड।
0: तो टाइफाइड के बारे में हम सब सुने दोस्तों। तो हम आगे का कार्यक्रम बबली जी और कौन सा संदेश है?
2: आगे बढ़ने से पहले अभी एक व्यक्ति ने जो हमारा प्रोग्राम भी जो इतना दिल लगा कर भी सुनता है, हालांकि हल्दी में वो अपना नाम भी नहीं बता पाए तो हम उनका नाम यह नहीं बता पाऊँगी नहीं ले पाऊँगी, फिर भी हम उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि यहाँ प्रोग्राम बनाते सजाते में तो इतना देर याद करना पड़ता है। तो ये शख्स ये सुनने वाला भी हमारा साथ जोर तोर से याद की और तुरंत फ़ोन लगाई और कहा कि सोंठ जाने की सोंठ हम अभी बात की, उसको भी जब हमारे घर जो बच्चे हुआ आते हैं तो उसको बनाते हैं वो माँ के देने के लिए, माँ को खाने के लिए, और वो है सठौड़ा।
0: सठौड़ा सही बात।
2: सठौड़ा बनाते हैं उसमें डाला जाता है सौंठ और फिर जो गोल गोल बड़ा बड़ा बड़ा लड्डू घीत बनता है ढोड़ी जिसके कहते हैं
0: ढोड़ी,
2: हाँ उसमें भी डाला जाता है ये सौंठ। और ख़ास तौर पे ये एक मिठाई भी जो बनते हैं गोजिया,
0: गोजिया में भी डालते हैं
2: गोजिया में भी डाला जाता है सौंठ।
0: चलो शांता जी तो ये भी कभी हम लोग का मिलेगा खाने का कैसे उसमें? और
2: जलेबी, जलेबी नहीं गोजिया जरूर बनाना क्योंकि आजकल गोजिया और उसको क्या कहते हैं भाजी वाला सहना,
0: सहना
2: सहना कम लोग बनाते हैं।
0: और कौन सा संदेश है क्योंकि घड़ी का रफ्तार भी रुकता नहीं है?
1: हाँ जी,

0: ध्यान, हमें रोज 15-20 मिनट ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन।
1: मेडिटेशन
2: करना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: अब मेडिटेशन आप जहाँ भी हो वहीं कर सकता, अगर आप बस में हो या ट्रेन में हो या ट्रेन में हो तो ये भी हो सकता है।
0: हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता शांता जी।
1: हाँ, तो इसलिए ऐसे नहीं कि घर ही पे होना चाहिए।
0: नहीं, जरूरी नहीं घर पर ही है, जहाँ भी है, जहाँ आपको समय मिले।
1: हाँ,
0: वहीं पर।
1: अगर आप पार्क में हो या बस में हो या ट्रेन में हो, अगर आप भी मैं रह करत हो ये कोई के संगे गाड़ी में, तो ड्राइवर के बगले में हो या पाछे में, आप ही मेडिटेशन कर सकते हो।
0: हाँ जी,

0: शांता जी, मेरा गुरु जी योगा टीचर ने कहा था कि बोले हमारा शरीर जो मिला है तो 24 घंटा में, 24 घंटा को और ये शरीर को जब निरोगी रखने के लिए अगर आप चाहे तो कम से कम 24 घंटा में से 15-20 मिनट, ये कम से कम है, उसे और योग में करना चाहिए, ध्यान में करना चाहिए। तो बबली जी ने भी ये संदेश आज हम सबको सुनाए, पर आगे का और संदेश क्या है बबली जी?
1: हाँ जी, आगे का संदेश है नाक। रात को सोते समय नित्य रोज यानी सरसों का तेल नाक में लगाएं। हर तीसरे दिन 2 कली लहसुन रात को भोजन के साथ लें। सुबह 10 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च रोज चबाएं। सर्दी, बुखार और सांस का रोग नहीं होगा और नाक स्वस्थ रहेगी।
2: अच्छा, देख यहाँ पर फिर सरसों का तेल एक बार फिर से यहाँ पे सुनने को मिला है, यानी कि सरसों का तेल इसको नाक में लगाना चाहिए।
1: हाँ जी,
0: ऐसा। तो दोस्तों, इन बातों को ये संदेश तो हमने भी शांता जी पहला बार सुना हूँ, और जरूर इसे कभी काल के अब नहीं प्रयोग करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कैसे हम सब ये जो हर बार हैरफ्स आ जाता है तो खरीप आदि आता है।
1: हाँ जी, जरूर।
0: तो उससे कैसे हम बच सकते हैं? बबली जी, इसे एक बार और आप दोहरा दीजिए।
1: हाँ जी, नाक में
0: जी।
1: हाँ जी, नाक। रात को सोते समय नित्य सरसों का तेल नाक में लगाएं। हर तीसरे दिन 2 कली लहसुन, हर रोज नहीं, तीसरे दिन।
2: हाँ, नादरी दाख।
0: पर आपने कहा 2 कली लहसुन, उस वो क्या है?
2: तो तेंचस
1: दो। हाँ जी,
2: तो तेंचस क्नोफ्लो।
1: रात को भोजन के साथ ले।
0: हाँ,
2: कच्चे ऐसे?
1: हाँ
2: ही।
1: हाँ,
2: भोजन के
1: हाँ
2: साथ
1: जी, कच्चा। अच्छा। और 10 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च रोज चबाएं। सर्दी, बुखार और सांस के रोग नहीं होंगे और आपकी नाक स्वस्थ रहेगी।
2: ऐसा?
1: हाँ जी।
2: काली मिर्च यानी स्वार्थ पेपर।
1: हाँ जी,
2: स्वार्थ पेपर के साथ 10 तुलसी दल, तुलसी पत्ते।
1: हाँ,
2: तुलसी
1: जी।
2: पत्ता चबाने के मतलब है कौ।
1: हाँ जी, कौ करना
2: है। हाँ, ऐसे हम भी नए नए शब्द यहाँ पे हमको भी मिलते हैं सुनने के लिए, चबाने के लिए। हाँ, हमारे सुरिनाम में भी सब कहते हैं क्या चबा रहे हो। तो ये चबाने की कोई गलत बात नहीं, एक अच्छा शब्द है। हम यहाँ डच में कहते हैं कौवन। हाँ, सुनने वालों, आप सुन रहे हैं, जैसे आपको पता है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम।

0: शांता जी और संदेश क्या है बबली जी इसमें सुनाने वाले हम सबको?
1: अगला संदेश है मालिश।
2: मालिश मसाज।
1: हाँ जी मसाज। नहाने जाने से आधा घंटा पहले सर के ऊपरी हिस्से में सरसों के तेल से मालिश करें।
2: देखो सरसों का तेल एक बार फिर यहाँ आए, तीसरा बार हमने सुना है, दिस कितना अच्छा है सरसों का तेल प्रयोग करने के लिए।
1: सही बात शांता जी, भारत में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं,
2: इसलिए वहाँ के सब भारतीय लोग ऐसे चमकते हैं सरसों के तेल की तरह।
1: और सरसों के तेल से मालिश करने से सर हल्का रहेगा और दिमाग तेज रहेगा।
0: शांता जी सरसों के तेल हॉलैंड में मिलता है?
2: हाँ हाँ, मस्टर्ड ऑयल।
0: मस्टर्ड ऑयल उसे कहते हैं?
2: हाँ मस्टर्ड ऑयल यहाँ मिलता है।
0: अच्छा।
2: हाँ।
1: और रात को सोने से पहले पैर के तलवे, नाभि और कान के पीछे और गर्दन पर सरसों के तेल की मालिश करके सोए।
2: रात को सोने से पहले तलवे, तलवे यानी के फुट सोल पे,
1: बीच का हिस्सा पैर का। हाँ जी तलवे,
2: तलवे
1: और नाभि,
2: नाभि यानी कि नाफल।
1: हाँ जी नाफल। और कान के पीछे का हिस्सा।
2: हाँ कान।
1: हाँ जी। और गर्दन पर सरसों के तेल की मालिश करके सोए।
2: हाँ गर्दन। अच्छा।
1: और इससे नींद अच्छी आएगी।
2: हम आज रात के ट्राई करेंगे।
1: और इससे मानसिक तनाव, जो दिन में आपके दिमाग में इतना तनाव है,
2: हाँ हाँ,
1: वो दूर भागेगा।
2: अच्छा तो इसे जरूर प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में सरसों का तेल नहीं है सुनने वालों, तो आप जरूर से इसे खरीदें। ये छोटा पिंक में भी मिलता है और थोड़ा से बड़ा बोतल में भी मिलता है। आप जो चाहे आप जो इसे ज़रूर खरीद कर इसे प्रयोग करें।
1: हाँ जी। और मालिश करने से आपकी त्वचा मुलायम रहेगी, सॉफ्ट।
2: वाकई में जैसे हमने कहा ना, हम ये सर्दी के मौसम में हम अपने पैर में लगाते हैं।
1: हाँ जी।
2: तो पैर भी वाकई में बेबी फुदगत हो जाते हैं, मुलायम होता है और पैर का रंग जो है उसका निखार आता है।
1: हाँ जी।
2: तो जैसे आपने कहा नाक में लगाना, कान के जर में लगाना, नेक में लगाना,
1: नाभि में।
2: हाँ जी, नाभि पे।
1: और सप्ताह में एक दिन पूरे शरीर की मालिश जरूर करें, हफ्ते में एक बार।
2: अच्छा ये भी।
1: हाँ जी।
0: यानी कि हमें अपना जो पांच तत्व का बना हुआ शरीर है इसमें और खूब अपना उसे सेवन करने के अवसर घरेलू सामानों से कैसे क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ने वाले हैं एक सुंदर गीत की ओर, पर सुंदर गीत को और बढ़ने से पहले कुछ और सुना सकता हूँ शांता जी या ना?
2: एकदम चले।
0: चला दूं?
2: चला दो।
0: दोस्तों यहाँ है ये संदेश की हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर आगे कार्यक्रम में और भी काफी संदेश है।

0: हाँ जी, ओम शांति ओम। आपको सुनाया गया है यहाँ फाव हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से इस प्रोग्राम जो आप तक पहुँचाया जाता है, जिसका नाम है ज्योति का प्रकाश। सुनने वालों, तो यहाँ से आपके समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे बबली जी क्या फरमाएगी?
1: हाँ जी, आगे का विषय योग और प्राणायाम।
0: जी, योग और प्राणायाम।
1: हाँ जी, नित्य कम से कम आधा घंटा योग और प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें,
0: तो इससे ऊर्जा बढ़ेगा।

0: तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ में प्राणायाम करें, यानी कि आदम हालिंग।
1: हाँ जी,
0: हाँ वाकई में, तो इसमें एनर्जी होगी और भी तंदुरुस्त रहेगा शरीर भी, शरीर के साथ मानसिक भी तनाव भी दूर होगा।
1: हाँ, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी तो
0: जी। और आगे हम सुने,
1: आगे है हरड़।
0: अच्छा, वो क्या होता है?
1: ये भी एक तरह का मसाला है शांता जी, जो भोजन में प्रयोग किया जाता है।
0: हरड़। हरड़,
1: हाँ जी। हर रोज एक छोटी हरड़ भोजन के बाद दांतों तले रखें और इसका रस धीरे धीरे पेट में जाने दें। जब काफ़ी देर बाद यह हरड़ बिल्कुल नरम पड़ जाए
0: जी,
1: तो चबा चबा कर निगल लें। इससे आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे।
0: अच्छा।
1: और दांत 100 वर्ष तक निरोगी रहेंगे और पेट के रोग नहीं होंगे।
0: तो इससे हमको ज़रूर खोजना चाहिए ये क्या होता है, हम तो नहीं जानते हैं। फिर भी
1: आपने जैसे नीम की दातुन देखी है तो
0: जी,
1: तो ये भी दातुन की तरह मोटी होती है।
2: दातुन क्या चीज है?
1: नीम, नीम तो देखा है, नीम का पेड़।
2: नीम का पेड़ तो हमारे घर से है।
0: दातुन वो होता है, पहले हम सूरीनाम में भी उससे प्रयोग किए, आजकल हम कहते हैं तांद बोर्स्टल दातु था, उसे एक पीस ऐसे स्टोकिए ना, चाहे हैनिंग के था या कुछ भी, आज तो हैगा सूथ हाउथ के भी बनाते हैं, तो उसको जो टॉप है उसका ना, उस पे कूच कूच कर आप उसको नरम करें तो उससे आप अपना दांत सफा कर सकते हैं।
1: सही बात शांता जी,
0: एकदम बायोलॉजिस्ट
2: शांता जी। अब इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा।
0: जरूर
2: कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आपने कह दिया कि उसे लकड़ी को, यानी कि स्टेंगल है ना
0: जी,
2: और मुंह में धल करके कूचने पड़ता है।
0: हाँ, उसको नरम कर देते दतुई हो जाता है, उससे अपना दांत बना देते हैं एकदम बायोलॉजिकल।
2: मैं अगर आपसे कहूँ, जितना शादी लिफोर्नो से लाइडिंग जाता था ना बारात,
0: अच्छा,
2: तो हम लोग रात भर और काफी जगह तो ये होता था, नाटक देखते थे और रात के बीत जाता था, सुबह में सब कोई दतून करते थे और टिकिया लेकर मुंह में।
0: हाँ हाँ, तो वो पहले हमने देखी, वैसे हम मुझे पता नहीं था, पर मेरे बाबूजी ने ऐसे सिखाई हमको, तो ये इस तरह से मुझे याद है। और भारत में ऐसे हमने देखे, जब वहाँ पे हॉलीडे से जाती हूँ तो हम वहाँ पे काफ़ी देखते हैं ये।
1: मेरे पापा भी नीम की दातुन रोज करते थे
0: जी,
1: और उन्हें हम ऐसे चबा चबा के करनी।
0: और दांत साफ करने के लिए, सफ़ेद रखने के लिए कोयला भी इस्तेमाल करते थे।
1: हाँ, पहले
0: कोयला,
1: बिल्कुल सही बोला आपने, कोयला भी। हाँ,
0: कोयला ना जोन हैगा या बारबेक्यू, कोयला नहीं बारबेक्यू, कोल नहीं उसमें, क्योंकि उसमें तेल मिलाया जाता है ना, जो
1: लकड़ी कोयला,
0: हाँ असली कोयला है,
1: जो उससे दांत साफ करते हैं।
0: अच्छा। उससे दांत साफ करता है एकदम,
1: मंजन कहते हैं हिंदी में।
0: हाँ, उससे सफेद हो जाए,
2: कोयले का मंजन।
1: हाँ जी,
2: तो ये बात तो हड़ा, ये इस पे तो थोड़ा से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो गया कि थोड़ा देरी से ये बात को पता चला, क्योंकि अब बालों तो सफ़ेद होने लगा। हमारे भाई रोटरडाम में जो ये कार्यक्रम को सुन रहे, उन्होंने तो सब मोको मोको के काम किया, अपने आप को और बचाए, और यानी कि सब प्रकार से जितना बातें हम सब आज किए हैं सब पता था उन्हें, और अभी फ़ोन करके हमसे कह रहे थे। पर अब ये बात है कि हड़ा ठीक कह रहा हूँ ना?
1: नहीं, हरड़।
2: हरड़,
1: हाँ जी।
2: तो ये हौलाद में मिलता है, क्योंकि अब तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा सफ़ेदी बाल आने लगा है शांता जी, पर जो कुछ से बच सके तो क्यों ना हम उसे प्रयोग करें।
1: हाँ जी, ज़रूर मिलता है, इंडियन दुकान में जाइए या पाकिस्तानी दुकान में, आपको ज़रूर मिलेगा।
2: तो हम सबको ये मिल सकेगा और ये हमारे बालों को सुरक्षित रखेंगे।
1: हाँ जी, बाल कभी सफेद नहीं होंगे और दांत 100 वर्ष तक निरोगी, कोई रोग नहीं लगेगा दांतों में,
2: 100 वर्ष तक निरोगी।
1: हाँ जी,
2: तो अपने दांतों के भी हम सब इसी प्रकार से और सुरक्षित रख सकेंगे।
1: हाँ जी
2: बबली जी, आगे जोरी जोर से और हम लोग का जो रफ्तार चल रहा है, तो आप अपना संदेश सुनाइए।
1: आगे का संदेश है सुबह की सैर। सुबह सूरज निकलने से पहले पार्क या हरियाली वाली जगह पर सैर करना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इस समय हवा में प्राणवायु का यानी ऑक्सीजन का बहुत संचार रहता है कि अधिक मात्रा में होती है ऑक्सीजन, जिसके सेवन से हमारा पूरा शरीर रोग मुक्त रहता है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है।
0: ये

0: बात तो सही है, सुबह के टाइम में तो ढेर सुस्तफ रहे।
1: हाँ जी, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी
0: जी,
1: और इससे जो हमारे रोग शरीर में बाधा डालती हैं चीज़ें, तो उसका रुकावट वो रुक जाएंगी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से।
0: हाँ, दो फेल सुस्तफ ये हम तक रहे, चलने से वो सब सुस्तफ आ जाता है।
1: सही कहा शांता जी। और जैसे घी खाएं मांस बढ़े, अलसी खाएं खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सबकी हेंकड़े।
0: ये
1: कि घी खाने से शांता जी,
0: हाँ जी,
1: मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो
0: जी।
1: और जो अलसी है वो भी एक तरह की तिलहन, तीसी कहते हैं उसको
0: जी,
1: और उसको खाने से दिमाग बढ़ेगा।
0: ये तो बहुत अच्छा है।
1: हाँ जी। और दूसरा है तेल तड़का छोड़कर नित घूमन को जाएं, मधुमेह का नाश हो जो जन अलसी खाए। कि रोज जैसे छौंका
0: जी
1: दाल नहीं खानी चाहिए, और रोज घूमने के लिए जाएं
0: जी,
1: और इसे मधुमेह यानी सॉइकर की बीमारी नहीं होगी।
0: अच्छा, हाँ, मधु की बीमारी नहीं होगा।
1: हाँ जी,
0: हाँ, हाँ। ये शब्द हमारे कान पे पहले सुनने को नहीं मिलता, मगर मधु कहते हैं मीठा के, तो मीठा यानी सोयकर सिक्त।
1: हाँ जी।
2: तो शांता जी, हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं?
0: ये हम आप लगा दो तो हम यहाँ साथ में सुन लेंगे, क्योंकि वक्त भी हो चला।

हाँ सुनने वालों, जाने पहचाने गीत है जो यहाँ पे आप तक पहुँचाया जाता है। जाने का इसका मतलब हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे समाप्त होने को आ गई है। और कहती हूँ, होना एक दिन सबका हिसाब है, होना एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। सुनने वालों, साथ देने और सुनने के लिए आपको बहुत से धन्यवाद कहती हूँ। और यहाँ से स्वीकार कीजिए शांता की प्यार भरी राम राम।

इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। मेरी ओर से भी सबको सुनने वालों को नमस्कार।

दोस्तों सुनने वालों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीने ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। हम सब यहाँ कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो यहाँ समाप्ति पे आ चुके हैं, आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश जरूर आपके पास पहुँचे होंगे और जरूर इसमें से कोई ना कोई प्रकार से आप इसे अपना लाभ इसे निकालेंगे। हमारे साथ सहयोग देने वाले शांता खेमई जी, बबली आसरा जी और मैं हूँ सेवक संजय आपके साथ, जो कार्यक्रम में सहयोग दिए। सभी सुनने वालों को हार्दिक से नमस्कार, फिर मिलेंगे।

रंग दे एक खुशनुमा सा रंग दे रंग दे या खुशनुमा सा रंग दे सबसे बेहतर सबसे अच्छा रंग दे सबसे बेहतर सबसे आजा सबसे

कुछ रंग फिर एक जाम भर। जिसके बेखबर अपने मैखाने का सदका रंग दे, अपने मैखाने का सदका रंग दे, अपने मैखाने का सदका रंग।

तरफ भी एक नजार। कह रहा है मस्या खिजर झूमदार, नरगिस आंखों का सदका रंग दे, नरगिस आंखों का आहे, नरगिस आंखों का आज हाँ नरगिस आ

कोई सुनता नहीं फरियाद यमावे आली, बरछियां चलती है और होते हैं तरकश खाली। माह सहरा पे फलक ने ये मुसीबत डाली, खूं में तर जुल्फ़ है यहाँ तक के परेशानी। जख्म तलवारों के खामोश खड़े खाते हैं, गश में झुकते हैं।

हुसैन जब के चले बाद दो पहर रन को, सकीना झाड़ रही थी कबा के दामन को, न पास था कोई था मेरे काब तौतन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुका के गर्दन को, नासिरा था कोई शाह कर बलाई को, सवार खुद ही किया था बहन भाजी को, किस बात का पल से

और ओल्ड इन गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज़्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

0: रे मियो तो वे साय तू ए, क्या गा रही
1: है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

और दो लफ्जों की है ये कहानी, मूवी का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमा ने इस फिल्म में काम किया है, गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों, और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: दूसरा आदमी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, ओल्ड इन गोल्ड का प्रोग्राम यहाँ से हम चलाते हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड इन गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बाहर प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड कांजोंग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारों हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एंड महमूद इन गोवा अथवा से सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहौर के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर
1: न जाए।
0: नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी कसम लौट
0: हेमंत कुमार।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाण सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम, मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं मैथी मुकेश की ओर और किस

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेल का कलर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

और आप लोग जानते हैं कि पुराने गीतों की मजा कुछ और है हमारे जनता। और हम चलते हैं, मीना कुमारी का एक फिल्म है, मीना कुमारी का एक फिल्म मौफी का नाम है, मौसफी का नाम है बैजू भौरा। नेहित इन्होंने 3 & 5 तक में एक सुपरहिट फिल्म ये थे। आओ सुना जाइए क्या गाते हैं दोस्तों।

रतन जी का ये सॉन्ग थी। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, महेंद्र कपूर का और आशा जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों ये भी एक ओल्ड एंड गोल्ड पुराना फिल्म का ये सॉन्ग है, और यानी कि मूवी का नाम है पुराना घुमरा। आशा जी एंड महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

मुझको मन फन तुझको मेरा प्यार पुकारे मूवी के नाम है घुमरा। अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं और आप लोग जानते हो एक भी सुपर हिट सॉन्ग है ये। आओ सुना जाइए क्या कहते हैं हमारे दोस्तों।

तो बताओ कि तुम मेरी कौन हो, अगर आपको ये पता होगा कि तुम और हम कौन हैं तो आप जरूर हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 2 0 7 7। हमारा लाइव आप लोग हमें तार कर सकते हैं रेडियो फाउन के माध्यम से। तो हम अगला गीत के ओर चलते हैं। नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। 1965 का ये क्लासिक सॉन्ग है।

समझी मूवी का नाम है जिंदगी और मौत। दोस्तों अगर आप चमेली को जानते होगे तो जरूर आप हमें तार करके बता सकते हैं कि चमेली कौन थे। दोस्तों कौन थे ये चमेली कौन थे? दोस्तों चमेली अगर आप चमेली के जानते नहीं होगे तो इस गीत से आपको पता चलेंगे कि चमेली कौन थे। और है आशा जी और परमा श्री मोहम्मद रफी का ओल्ड हिंदी एवरग्रीन सॉन्ग।

मंदी तले औ दोस्तो दोस्तो दोस्तो तो एक गीत यहां से है और मौफी के नाम है प्यार किया तो डरना क्या पद्मश्री मोहम्मद रफीका नीघ दिद्रिय सष्टकाये जोए।

और जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। मूवी का नाम है प्यार किया तू डरना क्या, लेकिन जो अगर प्यार किया है तो डरना नहीं है, लेकिन झूठ भी मत बोलना, झूठ भी मत बोलना, झूठ बोलने पर सजा मिल सकते हैं। और मूवी का नाम है तीसरी कसम।

को बताए है। मूवी के नाम थी तीसरी कसम राज कपूर। मैं मुकेश कहां गया हुआ जोंग है। और उसके बाद तो हम चलते हैं एक और ओल्ड एंड गोल, करोड़ों की चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस। मैं मुकेश

और धीरे धीरे चलो मेरी बाकी रनिया के बाद हम चलते हैं दादा हेमंत कुमार की ओर। और दादा हेमंत कुमार भी बहुत बेमिसाल गीत को गाए हैं। मूवी का नाम है 20 साल बाद। निकट होंगे 26 का ये सॉन्ग है दादा हेमंत कुमार।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: खिलाफ ना खिलाफ
1: तोरी शब्द में।

भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने विचारों के आदि हैं, गुलाम हैं, हम कुछ भी बदल नहीं सकते। यदि हम अपनी सोच नहीं बदल सकते, अपना जीवन बदलने के लिए अपना मन, अपनी अंतर्दृष्टि बदले। यदि चश्मा लगाने से हमारी दृष्टि में सुधार होता है मित्रों, तो मन में बदलाव से हमारा जीवन भी बेहतर होगा। और केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं, कोई और आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता है। मित्रों, इसके बारे में आप सोचें।

जीवन छोटा और क्षण भंगुर है। अपने जीवन काल में इस प्रकार आचरण करें कि वर्तमान में आपके लिए सुगंधित वातावरण निर्मित हो और भविष्य में मृत्यु के समय आप अनुकूलता पूर्वक स्वयं ही संसार छोड़ दें। आप मृत्यु के क्षण में ही संसार का सुख छोड़ देते हैं मित्रों, यही आपके जीवन की सफलता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो परिवार में धन दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति की गंध छोड़ते हैं। जीवन में पद के चाहत भाग्य में नहीं होती, जीवन की खुशी जंगलीपन और स्थिति में नहीं है, बल्कि आत्मा की पवित्रता में है।

मित्रों, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया? पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना। सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ तुम नहीं रहोगे। क्या छोड़ कर जाना है? इज्जत, इज्जत और ये कमाना है। मित्रों, इस गीत के माध्यम से

प्रिय दोस्तों, भगवान ने हमें दोस्त क्यों दिए हैं? ईश्वर जानता था कि हर किसी को मित्रता और प्रसन्नता की आवश्यकता होगी। वे जानता था कि मनुष्य को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जिसके विचारों पर वो भरोसा कर सके। वो जानता था कि आदमी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो दयालु हो, मदद के लिए हाथ बढ़ाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की देखभाल करने और समझने के लिए समय निकालना पसंद करता हो। ईश्वर जानता था मित्रों कि हम सभी को खुशी की भावनाओं को साझा करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। जब मुसीबत हमारे सामने आएगी तो प्रोत्साहन का स्रोत बनने के लिए किसी की जरूरत होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार हो, एक दूसरे से दूरी की परवाह किए बिना, कोई है जिसका प्यार हमेशा रहेगा और हमारे या मेरे दिल में रहेगा।

प्रिय दोस्तों, किसी का भला करना भगवान के बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जैसा है। हो सकता है कि आप ब्याज की गणना करने में सक्षम ना हो, लेकिन भगवान कर सकता है। और जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो वह इसे आपको लौटा देगा। इस पर विश्वास करता है? आप करते हो? तो फिर आपने दूसरों का भला करना क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उस व्यक्ति से आपको किसी भी रूप से कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए तुम्हें ये मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन किसी अन्य अदृश्य या लोग से। अच्छाई करो तो कहीं ना कहीं से आपको फिर वापस मिलेंगे। मित्रों, इस पे ध्यान से देख रेख करना, ध्यान करना मित्रों।

सुनो लो, मैं आपका सेवक संजय, और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। कहते हैं कि किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये आप खुद समझदार है, या कर्म के रास्ते पे चलेंगे, या धोखा देने का इच्छा रखते हो।

क्योंकि इस बात को भी हम जानते हैं कि जब इंसान का वक्त और हालात खराब होता है तो बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पांव भले ही फसल जाए पर जुबान को कभी फसलने मत देना। जैसे पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण। कहते हैं कि ज़बान को काबू में रखना, ये बात तो आपको भी पता है।

मैं हूँ संजय और कुछ ना कुछ तो सुनाते रहेंगे, क्योंकि किसी ने ये भी कहा है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो हिम्मत जो है तो वैक्सीन का क्या।

क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे इस गाना का धुन भी बदल गया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को किस प्रकार से बदलने चाहते हैं? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं।

जैसे कि अभी आपने सुने। नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं। लौटने का रास्ता बस ये मत गवाना।

क्योंकि कहा गया कि असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसके परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है।

कैसे आपको सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि किसी ने यह भी कहा है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो चाहे देर से आएगा लेकिन आएंगे जरूर। बस धैर्य रखो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों को साथ देती है।

याद रखना, ये किस्मत भी क्या चीज है ना, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। और जो साथ देती है तो वो बस ये तीन शब्द जरूर कहते हैं, छोटे छोटे शब्द है, मैं हूं ना, और मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

खुशी के लिए बहुत कुछ। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं। और ऐसा हम क्यों समझते हैं? किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुने कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव करता है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है।

उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है। और सम्मान कोई बैंक नहीं होता है। सम्मान कोई बैंक नहीं होता, उसकी गारंटी सिर्फ आपका चरित्र देता है। दोस्तों, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। खुद से हारने का बस ये अपने दिमाग से निकाल दे। तो जीत निश्चित हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छे हो तो।

ये भी हम जानते हैं कि जीवन भी ठीक एक स्टेशन की तरह है। आप तो जरूर ट्रेन स्टेशन पे गए होंगे। इसी प्रकार से जीवन भी ठीक स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। हम इस संसार के मेला में रह रहे हैं और ठीक जीवन भी एक स्टेशन की तरह। ये संदेश भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और उसे कौन बदलता है? उसे मजबूर कौन कर देता है? कहते हैं कि लोग और वक्त और हालात। तो कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और ये मजबूर करने वाला लोग, वक्त और हालात।

है कि जीवन के पथ प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन के पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ता है। याद रखो, याद रखो कि पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट और बर्दाश्त करनी पड़ती है।

बात को जरूर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्योंकि जीवन में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। और याद रखो, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट बर्दाश्त करना पड़ती है।

और मन की सोच सुंदर हो तो मन की सोच जब सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। और मन की सोच जो सुंदर ना हो तो जब सुंदर ना हो तो मैं ये आपके ऊपर रख देता हूं।

दोस्तों, उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। और ये नशा जब जिंदगी जीने का होना है तो आप जीने में भी मजा लेंगे। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जीने की, और क्या जीने की, जिंदगी जीने की। कहते हैं कि प्लसीर हबन एनत लेफन।

क्योंकि एक ना एक दिन तो कहा गया है कि हम कहानी बनकर के रह जाएंगे हम सब। एक ना एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब। बस कोशिश रहे कहानी अच्छी हो।

और दोस्तों शायद इस बात को भी आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो संजय किस कारण यहां बैठे हैं। क्योंकि बिना रुके सफर कर रहे हो, और किस चीज का सफर? उम्र का सफर। उम्र बिना रुके सफर कर रही है। सफर कर रही है और हम क्या करते हैं? हम अपने ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। आप इस ख्वाहिशों को छोड़ सकेंगे? क्योंकि ये उम्र कहीं रुकती नहीं है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। कहते हैं कि उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और हमें क्यों टाइम नहीं है? कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। जिम्मेदारियां और घेरे हुए और जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है।

भी सुनाए थे। मैं हूं ना, ये तीन छोटे छोटे शब्दों छोटे शब्दों आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द जो किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं,

क्योंकि खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटने चाहिए। किसको भरोसा कर सकते हैं।

एक संत ने भी बड़ा अच्छा कहे थे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि जीवन का असली सच जीवन का असली सच प्रेम हो या भोजन किसी को ज्यादा दे दो वो अधूरा छोड़कर चले जाता है।

सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता।

दोस्तों इस बात को गौर से सुनो कि माँ बाप वृक्ष के उन पत्तों की तरह है जिनकी छावा में तुम्हारा बचपन पला है। उनके इस उपकार को याद रखना और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना।

क्योंकि कुछ समय जब बीत जाता है जीवन का, तो जिसे हम शायद बुढ़ापा कहते हैं, वो कुछ भरोसा करने लगते हैं अपने बच्चों पे। धीरे धीरे ही सही पर सब हासिल होगा।

धीरे धीरे ही सही, पर सब हासिल होगा। जो कुछ खोया था अब तक सब वापिस होगा। यही सोचते हैं, क्योंकि इस बार भरोसा गैरों पर नहीं खुद पर है।

जैसे कि अभी आपने सुने। माँ बाप कभी गलत नहीं होती। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

तो पे जरूर ध्यान देना। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

और कहे गए हैं कि माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। क्या है इसमें? इसमें भेद क्या है? क्योंकि ईश्वर भाग्य से हमारे सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं।

आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। अंदर से एक मजबूत फैसले उसका जरूरत जरूर होता है।

और हो सके तो अगर अपने जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना। जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थी कुछ और होता है।

घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए।

क्योंकि इस बात को भी याद रखना हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है।

हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है, दिमाग में जो चल रहा है वे हमेशा जीभ पर आता है। तो इस बात पे कुछ और रखना चाहता हूं, गुरु जी ने इस बात को कहे थे, कि पैरों का गरम, पैरों का गरम पेट को नरम और सिर ठंडा रखे।

क्योंकि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है।

समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता।

बचता है क्या? बचता है कि सब्र करना सीख लो, सब्र करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा।

चित्र और चरित्र किसी की पहचान में मोहताज नहीं है।

पित्र मित्र चित्र और चरित्र। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं।

दोस्तों ये गलत फैमिली में ना रहे। कि हम गलती नहीं करते, क्योंकि गलती पीठ की तरह होती है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है अपनी नहीं।

बुजुर्गों ने कहा है। ये बुजुर्गों भी क्या क्या कह गए। बुजुर्गों ने कहा है कि रूप और रुपया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये रूप और रुपया, इस पर कभी घमंड ना करें दोस्तों। क्योंकि ये इंसान के पास सदा नहीं रहते हैं।

यहाँ तक हम आपके साथ दिए कुछ समय तक, यही आशा लेकर कि कुछ न कुछ और आपको अच्छा लगा होगा। यही कहना चाहूंगा, सुनते रहना फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक शहर, हर एक कोने, हर एक स्थान पे

भजन माला कार्यक्रम से यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। देन हाख लाइस कफेन, देन हाख लाइस कफेन, देन हाख लाइस कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा। आनंद अर्जुन शर्मा खरोधांदल बेफे के जरिए से हम सुनेंगे सत्यम शिवम।

समीर समीर दत्त जी की आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है सत्यम शिवम सुंदरम, पेश किया गया है देन हाखलेस कफेन देन हाखलेस कफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा खुरुधांधल बेफे के जरिए से शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए आपको हम लेकर चलते हैं देन हाखलेस कफेन फोर पार्क से एक बार फिर। जी हाँ, देन हाखलेस कफेन फोर पार्क से इस बार है सुंदर खुरुधांधल, सुंदर खुरुधांधल इन खुरुंत एंड फ्रॉइड, इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल सुंदर भजन के साथ।

उमरिया घटती जाए और चुनरिया कटती जाए, आपके लिए पेश किया गया है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये भी पेश किया गया है परशुराम मोहन लाल के जरिए से। इनका कार्य जो है देनाखलाइस का फेन फोर पारक सुंदर ख्रोत हांडल एन ख्रोनता एन फ्रॉइड, आपको लेकर चलते एक बार फिर देनाखलाइस का फेन फोर पारक से। बाव एन ऑनर हाउस बद्रेव, बाव एन ऑनर हाउस बद्रेव, इनका मालिक श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, हरिदत्त रोहित देव नारायण के तरफ से

भगवान के बंदे दुखों से न डर पेश किया गया है। देन हाखलेस कफिन फूड पार्क से बोवेन ऑनर हाउस बद्रेफ, बोवेन ऑनर हाउस बद्रेफ इनका मालिक श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण के तरफ से। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेकर आपको आपके साथ आगे बढ़ रही हूँ। देनाख खेकनुतोस्त्रात नंबर 10 से, देनाख खेकनुतोस्त्रात नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरु के निर्देशों में श्रद्धा भक्ति के साथ पेश है।

दीपक जो बुझे है जरूर से श्री राम जलाएगा, आप उन्हें पुकार करेंगे वो अवश्य आपके पुकार सुनेंगे। पेश किया गया है संस्था हिंदी प्रचार। संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांदगोरबिन के निर्देश में श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ से मिलकर हम सभी ने श्रवण की है सुंदर सा भजन, आपको लेकर चलते है दिनांक मकाई रात नंबर 6 से दिनांक मकाई रात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरेनिंग अलगमेन हिंदू ऑनरवेस नीदरलैंड की तरफ से।

अवश्य अवश्य, सभी संतन की जय। सुंदर से हनुमान चालीसा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है ननी गुड़िया की आवाज में। मेरे प्यारे सुनने वालों, पेश किया गया है धनात्मक इसरात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरेनखिंग अलखमेन हिंदू अंडरवाइज के तरफ से। रोटरडाम होकफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्कसराज शासन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से सुप्रभात कहते हुए।

सुंदर माता पिता के चरणों में न्यौछावर की जिंदगानी श्रवण जी के अमर कहानी आपको सुना दिया गया है। अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो भजन माला कार्यक्रम में पेश किया गया है रोटरडैम होपफुली टेक्सास नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्कसरा शासन फेर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से सुंदर सा भजन शुभ प्रभात कहते हुए आपको लेकर चलते हैं। दिनांक से हमें इंतराज लेत श्रीमती लेना बाबू राम जी के तरफ से

सुबह के कार्यक्रम यहाँ आपके लिए भजन स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेकर यहाँ से उपस्थित हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों। और यहाँ से एक बार आपको लेकर चलते हैं देन हाँ से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी। श्रीमती लिलियन मोतीराम जी शुभ दिवस कहते हुए

राम से बड़ा राम का नाम अवश्य अवश्य बात तो सच है। पेश किया गया है दनाख, दनाख से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से सुंदर सा भजन राम राम सिया राम, आपको लेकर चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम जारी करते हुए आपको लेकर चलते हैं। सुरीनाम वाली फोनोमैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर, श्री पंडित सुभाष महावीर भजन माला कार्यक्रम में सुप्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए।

हूँ कि इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी को प्रस्तुत कर रहा है।

तुम्हें से है ये चमक ये धमक ए सरकार, बस आप ही से है। फा हॉर्न रेडियो की डायरेक्टर स्टाफ पर्सोनेल और सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से मेरे प्यारे सुनने वालों, तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

मधुर वाणी में हमको सुना दी कि तेरी मंगल मेरी मंगल और सबका मंगल होवे रे। पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों भजन माला के लहरों में गोटा लगाते हुए यहाँ से संपूर्ण हुए हैं और पेश किया गया है फाउन रेडियो की डायरेक्टरी स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते। साथ देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद है। एक शुभ दिवस सभी को।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो पाहुन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आपको हार्दिक से स्वागत है आज इस सुबह की कार्यक्रम में। शुभ प्रभात, खुये मोर्ख, स्वीकार कीजिए सेविका की प्यार भरी नमस्कार। करो दिन के शुरुआत मधुर वाणी के साथ। उपस्थित हो गई हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों आपके स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेकर। ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको हम लेकर चलते हैं रोटरडम, रोटरडम हॉगवली टेक्सस वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर, संस्था जागृति, संस्था हिंदी सेवा संघ, श्री गंगा माता मंदिर, साथ में रोटरडम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्त्रात शासन फेर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के जरिए से शुभ प्रभात कहते हुए सभी सुनने वालों के लिए यहाँ से आरम्भ किया जाता है हनुमान चालीसा के साथ।

स्वरक में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं, जो हर पल हनुमान जी का वंदन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, रोटरडैम होपफुली टेक्सस वैक नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रैट सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महात्म जी के जरिए से सुंदर सा हनुमान चालीसा यहाँ से हमने शुरुआत की है। देनाख लाइस कम्फेन 4 पारक से आनंद अर्जुन शर्मा ख्रोत हांडल बेवे। जानकारी के लिए आप जरूर से श्रीमान आनंद अर्जुन शर्मा से तालुकात कीजिएगा 9655 तक 23 28 67 पर। पेश करते हैं यहाँ से

काल भी तुम, महाकाल भी तुम, काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रयलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम ही हो। पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों देन हाखलेस का फेम फोर पारक से आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा खुरुद हांडल पेफे के जरिए से। देना मकाई सरत नंबर छः से, देना मकाई सरत नंबर छः से हिंदू बास स्कूल फाहोन, हिंदू बास स्कूल फाहोन फरेनिंग अलगमेन हिंदू ऑनरवेस्ट नीदरलैंड के तरफ से हम सुनेंगे सुंदर सा गणेश भजन।

अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में यहाँ से हमने श्रवण की है कि सुबह सुबह ले गणपति का नाम। गणेश जी की कृपा से हर दिन फलदायक हो। पेश किया गया है दिनात्मक का इसरात नंबर 6 से, दिनात्मक का इसरात नंबर 6 से हिंदू बासस होल फाहून फरेनखें अलखमेन हिंदू ऑंडरवेस की तरफ से। जानकारी के लिए आप जरूर से तार कीजिएगा 9703489924 पर। देन हाँ नंबर 10 से नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, संस्था हिंदी प्रचार नीदरलैंड से परिवार चांद गुरबीन श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ से पेश किया जाता है।

आखे इकनी तस्रात देन आखे इकनी तस्रात से जी मेरे प्यारे सुनने वालों देन आखे इकनी तस्रात से संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देश में श्रद्धा भक्ति के साथ ये सुंदर सा गणेश भजन यहाँ से हमने मिलकर और श्रवण की है। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नई उम्मीदों के साथ जरूर से आंखें खोलना। Den Haag Leiscafé in Voorpark is zondag groothandel in groenten en fruit. In Kamalik Johe, Sriman Parshuram Mohanlal. Sriman Parshuram Mohanlal ke taraf se yahan se ek baar fir hum sundar sa Ganesh bhajan shravan karenge.

0: अति सुंदर गणेश भजन आपके लिए श्रवण किया जाता है यहाँ से आपका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। सुंदर सा गणेश भजन पेश किया गया है देन हाखलेस कंफेन फोर पार्क से। सुंदर ख्रोत हांडल एन खुरुंत एन फ्रॉइड, इनका मालिक जो है श्रीमान परशुराम मोहनलाल, इन्हीं के जरिए से आपने सुने सुंदर सा गणेश भजन। प्रथम पूजनीय भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से आपके हम सब का दिन शुभ और मंगलमय होवे। देन हाँ से खमीत राजलेट श्रीमती लैन बाबू राम जी के जरिए से हम यहाँ से एक बार फिर से सुनेंगे गणेश जी का सुंदर सा भजन।
1: वक्त

अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में यहाँ से सुने हम सुंदर सा गणेश मंत्र। जी गणेश मंत्र यहाँ से हमने श्रवण की है और पेश किया गया है दनहाखला इसको नैनाई दनहाख से खमेंत राजलेट दनहाख से खमेंत राजलेट श्रीमती लन बाबू राम जी के दर्जे से बड़े प्यार के साथ ये सुंदर सा भजन यहाँ से मिलकर हमने श्रवण किए आपिका फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नई आशा है, एक नई आशीर्वाद है। Den Haag Lijskafé in Voorpark, bouw- en onderhoudsbedrijf, jo Sriman Haridat Rohit Dev Narayan ke nirdeshya mein hai, aur Sriman Haridat Rohit Dev Narayan ke taraf se, yahan se ek baar phir, mere pyare sunne walo.

सुंदर अति सुंदर श्री गणेश भजन यहाँ से आपके लिए पेश किया गया है। खुद को खुश रखिएगा मेरे दोस्तों, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है आप ही पर। De nagelijkskafeen voor Parkse ze bouwen en onderhoudsbedrijf. Bouwen en onderhoudsbedrijf Josriman Haridat Rohit Devneran ke nirdeshya mein hai. Aur inke taraf se yahan se sundar sa Ganesh bhajan yahan se milkar humne sravan ki hai. Den Haag se Srimati Lilian Motiram, Srimati Lilian Motiram ji, hum sabhi ko ek shubh

कबीर सिंह लखबीर सिंह लखा जी की आवाज में यहाँ से सुने सुंदर सा गणेश भजन पेश किया गया है। देन हाँ से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से, श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से और श्रीमती लिलियन मोती राम जी हम सभी को एक शुभ दिवस कह रही है।

राम नाम का गुणगान करिए, उस दिन हमारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी मेरे दोस्तों। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारे सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। पेश किया गया मेरे सुनने वालों सुरीनाम लिफोनोमैन का नाम हो कि इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्तराज, श्री भक्तराज श्री पार्वती मंदिर से श्री श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से सुप्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी को कह रही है। रेडियो की डायरेक्टरी स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेल खर्च की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर, सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

एकदम टॉप, एकदम टॉप। बहारों की बारात आ गई। फिल्म का नाम यकीन। आप यकीन न मानो, बल्कि फिल्म के नाम ही यकीन है। यकीन फिल्म 1969 में पिक्चराइज किया गया है। सुंदर सा गीत आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनो। और फिल्म यकीन में धर्मेंद्रा जी शर्मिला टैगोर के साथ, और गीत का गायक जो है आपको तो मालूम हो गया है, ना मालूम है तो यहाँ से हम बता देते हैं, मोहम्मद रफी जी। और गाना के लिखक है हसरत जयपुरी और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन। इतने बढ़िया बढ़िया गीत हमारे खातिर आज के दौर पर और छोड़ के चला गया है। Het is gewoon voor eeuwig। कई पीढ़ी जो अभी आगे में आएगा वो सब ये इनका लुफ्त जरूर से उठाएंगे। En het meeste geval wordt het liedje gewoon in een nieuw jasje gestoken. Op een andere soort muziek, maar dan wordt het wel in leven gehouden op zijn of haar manier. Maar het begin is toch wel ergens anders. Fijne vrienden zijn als een zonnestraal en warme, die warmte brengen keer op keer in elk moment. Groot of klein, met jullie ben ik nooit en nooit alleen. Samen lachen, samen dromen, hand in hand de weg verkennen. Dankbaar voor jullie, dag en nacht, vriendschap puur en krachtig gebracht. एक बार फिर यहाँ से हम सुनेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों मोहम्मद रफी जी की आवाज में, और म्यूजिक डायरेक्टर है एक बार फिर शंकर जयकिशन, और गीत का बोल आप खुद ही सुनो।

दूर दूर से सुनते हैं, पसंद करते हैं। आपका उत्साह मेरा जुनून बढ़ा देता है, यकीन मानो, सच कहती हूँ, है ना? पॉजिटिव देंकन खात नीत ओफर एल्क केयर, पॉजिटिव देंकन खात नीत ओफर हेट एल्क केयर फरवाख्तन दैट हेट बेस्ट गेबर्ट, maar over het accepteren dat wat er ook gebeurt het beste is voor dit moment.

अपने जो है ना वो यकीनन सच ही होंगे। ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो आवश्यक थे हमको अपना जीवन में धारण करने के लिए, इसे ज़रूर से हम अपना जीवन में धारण करें। और वो ये है मेरे प्यारे सुनने वालों कि वख्नित यह हेल लेफन अपम परफेक्ट लेफन अम परफेक्ट हर्स अम परफेक्ट पार्टनर अम परफेक्ट बान हैद बस्तात नीत नो नो هاد بستات نيت alles waarvan je verwacht dat het perfect is heeft zijn eigen gebreken. Die heeft zijn eigen gebreken. Het gaat erom de goedheid in alles wat je tegenkomt te vinden en het beste van jezelf te geven. Zo is dat, mijn lieve mensen.

0: जाते जाते ओ जरा जाते जाते
1: फिल्म ललकार से निकाल दिया गया है ये सुंदर सा गीत। जरा मोर के तो देख ओ कुड़िये, कुड़िये कहते हैं लड़की के, लड़की के दावे त्यू दात ओक ओक कुड़िये।

मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में आपके लिए ये सुंदर सुंदर सा गीत पेश किया जाता है। और ये सभी गीत आप जो अभी तक सुने हैं ना, ये सभी धर्मेंद्र जी के ऑक्टेट हुक किया गया है।

0: से फरमा दी है
1: रफ़ी साहब जी ने कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ऐसा इसलिए मेरे प्यारे सुनने वालों, क्योंकि आप अपने मुख द्वारा अपने मुख से ही अपना ही कर्म भी बना लेते हैं। Alles wat je doet, doet u voor jezelf. Als je iets goeds doet, doet u ook voor jezelf. Als je iets slechts doet, doet u ook voor jezelf. U plant gewoon uw eigen toekomst. Takdir aap apne se aise banate hai, to aap aisa na kare. Aur na sirf aapko main kehti hoon, ye mere liye bhi utne hi zyada powerful manti hoon. सब कोई धरती पर आए हैं अपने अपने कर्म के अनुसार और अपना अपना कर्म को भोगने के लिए। एक सुंदर सा गीत यहाँ से फिर हो जाए, और वो भी धर्मेंद्र जी के एक्ट किया हुआ फिल्म है।
2: कैसे जीते हैं भला।

अति सुंदर चलती का नाम गाड़ी। चलना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है मेरे प्यारे दोस्तों, और रुकना तो मौत है। आया सावन झूम के वही फिल्म से ये सुंदर गीत आपके लिए, यहाँ से मैं भी बैठकर आनंद भी ले रही थी। द वार है इट इस, द वार है इट इस, दैट यू नीट वेट व्हाट एर मॉर्गन गात गेबेरन। द वार है इट इस दैट यू नीट वेट व्हाट एर मॉर्गन गात गेबेरन। हेट लीवन इज अ वांसिनिगे रेस एंड नीट्स इज गगारंडीर्ड। Het leven is veel beter, het leven is veel beter als je in het huidige moment leeft. Het leven is moeilijk, maar niet onmogelijk. Als je iets wilt doden, dood dan de negativiteit in je. Geniet op elk moment van je leven, ook op deze dag, met de hartelijke groeten. Met de hartelijke groeten vanuit Found Hindustani Radio.

एक बार फिर यहाँ से आप सबको हार्दिक से स्वागत किया जाता है ये खूबसूरत दिवस में, ये खूबसूरत मौसम में, ये खूबसूरत पल में। आज से बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। उसी खुशी के उपलक्ष में हम सुनते हैं हमारे श्री नाम के एक सुंदर सा रेगी डांस हॉल।

सिरे नामे लोबी सुनाई हमको ते अंदर ते रगी डांस हॉल के आवाज में हमने यहाँ सुने और एक सुंदर सा गीत केती कोती के बारे में।

dat is dan echte lobby lobby in deze zware tijden. En je blijft van iemand houden, dat is top, top en is top. कहते हैं कि जब तक मेकअप करना है तब तक मेकअप कर लो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भाइयों भी मेकअप करता है ये ना मत सोचो। हाँ हाँ कि जब तक मेकअप करना है कर लो, जब तक उम्र है मेकअप करने के लिए कर ले, नहीं तो एक समय ऐसे आ जाएगा जहाँ पर सिर्फ चेकअप करना पड़ेगा, तब मेकअप का खेल बिगड़ जाएगा। सुनेंगे हम आपका फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से।

कमी नहीं यारों की, बच के रहना दुनिया से, मोटिवेशन रैप सॉन्ग रियलिटी ऑफ फेक फ्रेंड्स। जिंदगी, जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है मेरे दोस्त। हाँ, आप सोचेंगे क्या राज है जिंदगी, तो डोंट वरी, मैं बता रही हूँ ना आपको कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज ये है कि ये रुकती कभी नहीं, इसलिए हर पल जी लो मेरे दोस्त, कल का भरोसा कभी नहीं। कल तो दूर है, ये पल का भरोसा कभी नहीं, तो छोड़ो कल की बातें, जो आज है अभी में जी लो। वक्त के साथ सब बदल जाता है, वक्त के साथ सब बदल गया। जी हाँ, ये प्रकृति की हकीकत है कि वक्त के साथ सब बदल गया, जो अपना था वो पराया हो गया। जिंदगी, जिंदगी की इस भीड़ में आज काफ़ी इंसान अकेला हो गया। बात तो सही है।

ये भी एक सुंदर सा लाइन है कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है।

हाँ, हर समय के, हर पल के, हर चीज़ के, यहाँ एक संगीत, उसे संगीत के पोइसी में उतार दिया जाता है। जो भी हो, एक स्वेत मक्का।

ये सांगर का नाम मैं नहीं दिखती हूँ तो नहीं बता सकती हूँ, पर ये गीत आपको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैं चला दी आपके लिए, ताकि आप भी कैनस कर लो कि ये सब गीत भी है। कभी जीत तो कभी हार मिलेगी ये तो है ना, कभी जीत तो कभी हार मिलेगी, हर मोड़ पे एक पुकार मिलेगी, जो हिम्मत नहीं हारते कभी। हाँ वो आप भी है मेरे दोस्त जो आप सुन रहे हैं, हाँ आप हिम्मत हारने वाले नहीं है। जो हिम्मत नहीं हारते कभी उन्हीं की, उन्हें ही मंजिल पर, उन्हें ही मंजिल बार बार मिलेगी। जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, जिंदगी को मुस्कुरा के जी लो मेरे दोस्त, हर गम को भुला कर जी लो ना, क्या पता कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो, आज को खोल के जी लो मेरे यार मेरे दोस्त।

0: in Nederland zeggen wij, hoe gaat het? In Germany they say, danke. In Frans me kehte merci. Haha, aise sabhi desh ka jo hai na bhasha, wohi is geet me dhar desh hai, bata desh hai. In China we say chi chi. India me they say dhanyavad. Pakistan me we say shukriya. ऐसे है कई अन्य देशों का बता दी है कि हू खातत वहाँ पे सभी भाषा में. दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं है, दिल को अब किसी से कोई गिला नहीं, मन से जो भी चाहा वो मिला नहीं. बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई, वक्त बदनसीबी कहूँ या वक्त की बेवफाई. अंधेरे में दिया मिला, पर वो भी जला नहीं.
1: के साथ खेलते हैं, वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे. जो खेल आप अपने फायदे के लिए दूसरों के साथ खेलते हैं, वही खेल एक दिन प्रकृति आपके साथ भी खेलेगी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है. आप कितने भी होशियार हों, कितने भी चालाक हों, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो आपसे भी ज्यादा होशियार है. हर कर्म का हिसाब जरूर करेगा. दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं. इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्म का हर उधार एक दिन चुकाना ही पड़ता है. जो कि...

love for you goes on and on. मुझ में लाख बुराइयां होगी मगर मुझ में लाख बुराइयां होगी मगर मैंने किसी से अपने मतलब के लिए रिश्ता नहीं रखा। झूठ बोलकर दिल जीतना नहीं आया मुझे, सच बोलकर कितने लोग गंवा दिया मैंने। दर्द और ज़िंदगी ऐसा साथ थे जैसे दोनों ने आखिरी सांस तक ही साथ निभाए, आखिरी सांस तक ही साथ निभाना हो।

दो मिनट बाकी है 11 बजने में, शनिवार के सुबह के कार्यक्रम है सिफर तक यूनी, आज का दिन है। हफ्ता भर से बहुत गर्म है, बहुत अच्छा भी है। ये गर्मी हमको सिखाता है कि अपने आप को पहचानो और टाइम निकालो अपने खातिर। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना, थोड़ा आराम लेकर परिवार के साथ या अपने खुद पर बैठ जाओ, कहाँ आराम से एक गिलास पानी लेकर। आप बीर पीते तो बस थोड़ा ठंडा ठंडा बीर भी चलेगा, पर ढेर अल्कोहल नीत कौन ए फोर फर कूलिंग ए रुस्तक ए रुस्तक रुस्तक आंदून खेन सुवार एत सलाद बै फोर बिल से लिख फर तेर बार एन फर कूलंत। और जब झलवा हो तो झलवा में आराम से बैठ जाओ, या घर में जिस तरह से हवा बहते है ना उसी तरफ के दरवाजे या खिड़की खोल दो। पर इसी के साथ यहाँ से मैं विज्ञापन लगा देती हूँ, विज्ञापन के बाद आपसे ज़रूर मिलेंगे।

को धुन से पता चल गया है कौन सा गीत का धुन है ये। अभी बाद में उसी धुन का गीत सुनेंगे हम भी।

ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है मेरे प्यार सुनने वालों, इसी स्टेशन से आप नए नए स्टाइल गीत यहाँ से रिलीज किया जाता है। ये सब और जो रेगी हिंदी म्यूजिक आप सुनते हैं ना, ये भी पहला स्टेशन है जहाँ से ये रिलीज हुआ है, होता है।

0: हाँ, तो चिड़ैया मोर चिड़ैया एक के गाना गावे स्पेशल स्पेशल, ये आपके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से नए नए न्यू न्यू न्यू रिलीज आपके लिए। जरूर से फॉलो फॉलो फॉलो करते रहना फाउन हिंदुस्तानी आपके लिए। हमेशा सरप्राइज देते रहते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। यहाँ 12:01 गुजर गया है, यहाँ से मैं आपसे रुखसत होंगी। समय हो गया है और अभी कौन आएगा ये मुझे आज नहीं पता है, फिर भी आप फॉलो करते रहना। तब तक के लिए मेरी प्यार भरी नमस्कार आप स्वीकार कीजिए, अपना ख्याल रखना। कल ज़्यादा गर्मी था, आज थोड़ा कम है, जैसा भी है हमें तो चलना है, हमें तो चलना है, सभी को सभी चीज़ से हमें आनंद लेना है। मेरी प्यार भरी नमस्कार आप स्वीकार कीजिएगा, दुआ प्रार्थना में मेरे को याद करना।
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फाहम हिंदुस्तानी रेडियो।
2: पार्टी को आग लगा।
3: मिस इंडियन ब्यूटी पेजेंट 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde de kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten avond vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2047 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
6: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai, har roz ki tarah हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है. जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे. आप सब जानते हैं हम सब चून है द एवरग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे. हम आप लोग के आज चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे. आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेंगे, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ते हरियाली और रास्ता में गाया गया है. तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नेकंती तो इन सस्ते के जिसमें मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं, चलो मिलके सुनते हैं.

जी हाँ दोस्तों, बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे आँखों।

जी दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेहा ट्विन सिस्टर का फिल्म है मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते ही आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जा दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी। फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, नेकर जिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो हमने चलते हैं दोस्तों हरियाली और रास्ता का नेकर जिन टू इंसेस्ट का फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाए इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्तान मेघन की ट्वीन सस्ता का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और, ये बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा, करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का, ये निकाला हुआ गाना है, नेकन तीन ट्वीन सेस्टर का है। जे फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, मूवी।

0: से।
1: जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती। द मिलियन ऑफ आर्स नायतु मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे। एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहीं जो इस शस्त्र का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का, आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई खंचिंग ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं मूवी हम आप लोग के लिए चलते नई खंचिंग वेफन शस्तक में। जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटीन फाइव तक में। आँखियों का नूर है तू,

जी दोस्तों, आँखियों का नूर है तू, आँखियों से दूर है तू, जुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। नेगेटिव 5/6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं नेगेटिव 5/6 तक में, जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर एन महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम किया इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा ने कितने फैंस आज तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखा में बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मौज की सुनत काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

0: न कोई रहा है न कोई रहेगा। जोहर महमूद इन गोवा नेकंतिन फैंस सस्त का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam zoekt de wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindoestani Radio.
0: हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हर रोज़ की तरह हमेशा की तरह आपसे आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें और सॉन्ग्स हम चलाएंगे जो आपको पसंद है, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे और हर एक सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार अदाए बरस और सत्यकाल हो। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के ज़रूर सुनाएंगे। जहां पे जिस घर में दुख है या मातम है पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है, जहां पे खुशी है वहां पे भी हम साथ हैं। दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए, वैसे हम भी आपके साथ हैं। चलो दोस्तों हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे, एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको आपको जरूर सुनाने वाला है। मिलके हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक ज़रूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है मूवी हम जफर, जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है। देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी, हम मिलके सुनते किसी राह पे किसी मोड़ पर। इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है देखा जाए तो, देखते क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से।

0: सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं, और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज़ है किसी राह में किस मोर पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है, म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी। आनंद जी, हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ, नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे, अभी नहीं, तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों।
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र मूवी, मेरे हम सफ़र किसी राह पर किसी मोर पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए। मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना, एल्बम मूवी हीरा तमन्ना है, और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाइदिक से आनंद बख्शी की, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

जहाँ जस्तो मुभी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है ब्याह सूर्य थे दोस्तों आनंद बख्शी का लिरिक्स और आप जानते ही राहुल देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों हम आगे चलते हैं प्रोग्राम आप ही तो हम हैं आप नहीं तो हम नहीं हैं और आप सब चून हैं द एफ अगेन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल जारजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं जो प्यार से गाया है जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मूवी कति पतंग तक का है और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदेव बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे ही सुनते रहना। ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग मेरी कंतिन एनन सैफन तक का ये फिल्म है, जिसका आपने भी गीत को सुना है और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले को लगा ही चुके हैं अगले गाने को, और देखा जाए देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण नहीं कहती नाथन शस्त्र का है यार। और वो देखा जाए तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिलके सुनेंगे तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जहाँ दोस्तों तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, पद्मश्री मोहम्मद रफी ऑफ द क्वीन लता मंगेशकर की आवाज, म्यूजिक जिसने सजाया है वो रफी है और लाइरिक्स साहिर, मूवी दो कद दो कल्याण निखंतीन अख्तर से का जिसमें माला सिन्हा और विश्वजीत ने काम किया है। चलो दोस्तों अगले गीत को मैंने चुन पे रख चुका हूँ। देखा जाए एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मूवी जिंदगी और तूफान निखंतीन फैफन जैफन तक का है यार, और गाने वाला वही है मुकेश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और लाइरिक्स राम अवतार। चलो हम मिलकर सुनते हैं

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ, बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंतीन एनन तख्त का, न जाने क्या हुआ जो तुम छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मोहल्ले की लता मंगेशकर का आवाज है और सब कोई सुनो कोई जा मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिलके सुनेंगे न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया मूवी दर्द नहीं खनते इन तख्त का जिसमें हेमा मालिनी रजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर नहीं खनते तो इंसेस्ट का जिसमें जामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और द क्वीन लता मंगेशकर म्यूजिक शंकर जयकिशन और लायरी से साई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर का चलो आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज है और देखा जाए। जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लाइली से कफीन आजाद मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, I smile on my lips and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata.

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज़ सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उरित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊँ? क्या बात है।

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक आपको सुनाइए लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है? आप सोचिए और इत्मीनान से सुनिए, आपको ये गीत अच्छा लगेगा या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है जरूर अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं।

ना मिलो हमसे कहीं प्यार ज्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना, मैं तो मुकेश, इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। निगती फिर सिर्फ तक 1974 का ये गीत मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकाल कर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में। अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ, बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने। चलो मिल के सुनते हैं।

रफ़ी साहब की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। ये शानदार गीत हमने पेश की फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: वाह
1: क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में यह शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। VVV.FM.NL पर आप चुन हैं, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

0: ஐயர்
1: தொல்கதே ஆத்தாதே.

वाह, प्यार तो एक दिन होना था बल अगर होना था जरूर। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में से निकाल कर निकली फैफी सीमित का ये गीत और पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, ये गीत सबसे पहले आपने सुने थे पंकज उदास की आवाज़ में और वही गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुकेश जी ने ये गीत गाए थे लेकिन निकला नहीं था। तो जब ये गीत निकला पंकज उदास ने गाए हैं तो लोगों समझे वाह क्या बात है। लेकिन कुछ दिन बाद जब मुकेश की आवाज़ में लोग गीत सुने तो जान गए कि हाँ मुकेश जी ने पहले गाया था और बाद में पंकज उदास ने गाया। चलो हम आपको सुनाते हैं।

0: पंकज उदास
1: और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत आपको सुनाया गया फिल्म मोहरा में से निकाल कर। म्यूजिक डायरेक्टर है वीजू शाह का कल्याण जी का बेटा है। आज वो कल्याण जी आनंद जो दो हैं दोनों म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कल्याण जी का बेटा है वीजू शाह के साज पर ये शानदार गीत पेश हुआ ओवर फाउंड हिंदुस्तानी।

टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की हम आपको सुनाए हैं और शंकर जय किशन के साज पर फिल्म प्यार ही प्यार में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये गीत आप सुनिए, बस इस तरह से आ रहा है शाम। जी हाँ, ये गीत।

मैति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने निकाले हैं नेघंती नेघन शस्त्र से 1969 से ये गीत। चलिए प्रोग्राम में हम पेश करते हैं क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म धर्मात्मा में से नेघंती फेफ से इफ तक का ये गीत 1975 का ये गीत क्या ख्याल है। हाँ

एवरग्रीन किशोर कुमार, आपको सुना है ये शानदार गीत निकिती फेविन से ही मित्र को 1975 का एक गीत फिल्म धर्मात्मा में से हमने निकाले हैं। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।

जी हाँ, तुम बिन रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया ये शानदार गीत काफ़ी प्रचलित था, अब भी है और शायद ऐसा रहेगा भी, यानी बहुत पॉपुलर था, है और पॉपुलर रहेगा। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं राहत फ़तेह अली खान। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान आपको क्या सुना रहा है।

0: राहत फतेह अली खान जी और सुशांत जी मिलके फिल्म दे दनादन में से हमने निकाल कर आपको सुनाई है। चलिए विज्ञापन से पहले हम आपको ये गीत सुनाते हैं, क्या ख्याल है अगर जे ये हम आपको सुनाएंगे।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपने सुने ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और कार्यक्रम आप सुन रहे जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे एक बार फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपको हृदय से स्वागत किया जा रहा है।
1: Geschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden.

मधुमन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। फिल्म साजन बिन सुहागन नीतिन अख्तर सैफ इंतक येसुदास उषा खन्ना के साज पर हम आपको ये गीत सुनाए हैं। आप चुने फान हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आप कार्यक्रम नज़दीक से बैठ कर सुन रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल पता चला है, तो हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

आतिफ असलम आपको सुनाएं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए हमने ये गीत रखे हैं, क्या ख्याल है? आ रही है सलमा आगा जी। जी हाँ, सलमा आगा जी।

0: सलाम आगा, आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की कार्यक्रम में, आपको अवश्य अच्छा लगा होगा ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, चलो सुनते हैं ये गीत। हाँ
1: मुने ससुर संग रहने की
0: अच्छा
1: आए।

0: लता जी आपको सुनाए हंस परदेसी। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग ऐप करते हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसे अल्फानंद रैन के रहने वाला श्रीमान। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं
1: के आ गई रुत मस्तानी ओढ़ो।

ढोल सजना ढोल जाने रफी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं कि राहत फतेह अली खान जी, जी हाँ, अपने झड़कने वाले जिया के बारे में क्या कह रहा है। चलो सुनते हैं, बहुत दिन हुए हम भी नहीं सुने कि धड़कते हुए दिल कैसा होता है। राहत फतेह अली खान जी।

जिया धड़क धड़क जाए। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या देखते हैं शारदा जी, राहत फतेह अली खान के धड़कने वाला दिल को राहत दे सकती है। चलो सुनते हैं।

रोशन के साथ पर रवि साहब और लता जी मिल के आपको ये गीत सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जब आपका हृदय से स्वागत है तो लीजिए आपको ये गीत से हम आप स्वागत करते हैं इस तरह से लता जी।

पिया बोले होले होले। आपने तीन आवाज़ सुने, सैफ अली खान की, सोनू निगम और लता जी की। ये तीनों मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओपन नैयर के साथ पर कश्मीर की कली रफी साहब।

किसी न किसी से कहीं ना कहीं कभी ना कभी ओपी नैयर के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

महेंद्र कपूर जी, ये शानदार दिवस में आपको सुनाएं लता जी के साथ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आकाश पे दो तारे सदियों से चमकते हैं। चलिए, ये गीत के बाद हम आपको सुना रहे हैं, ये गीत इस तरह से आ रहा है।

ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फिल्म दिल ने फिर याद किया 1900 देखूं तो नहीं 1966 का ये गीत, और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: Put that woman in there.
0: Ready?
2: तुझसे नाराज जिंदगी अनूप घोषाल आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

अगर दिल किसी से लगाया ना होता, रवि साहब की आवाज में हम आपको सुनाए चित्रगुप्त के साज पर नेखंतीन एन शस्त्र का ये फिल्म है। और हमने पेश की फिल्म बड़ा आदमी से निकाल कर। चलो देखते हैं अगला गीत क्या ख्याल है, अगर जो मैं आपको सुनाऊं, सोनू निगम, साजिद और सुनिधि चौहान, ये तीनों मिलकर क्या कमाल करते हैं।

मारिया मारिया साजिद सोनू निगम और सुनिधि चौहान मिलके आपको सुनाई ये शानदार गीत इस तरह से हमने पेश की।

फिल्म लव स्टोरी में से निकाले, हमने ये गीत और पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आपको एक शुभ, सभी शुभ हम पेश किया जा रहा है। चलो हमको सुनाते हैं ये गीत इस तरह से।

न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएगी। ये शानदार गीत चला हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। इस गीत के पीछे एक राज है, एक कहानी है, लेकिन कभी फिर बता देंगे, इसे हम याद रखेंगे, शायद आप भूल जाएं, लेकिन कभी भी अगर ये गीत मैं चलाऊंगा तो इसकी कहानी आपको अवश्य बता दूंगा। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है, हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

और हद से ज्यादा तुम किसी से प्यार मत करना दोस्तों, कारण कि जब ज्यादा प्यार करते हैं और प्यार में कभी टकराव जो हो जाता है तो बस आंसू ही बहते हैं, उसके बाद हम आउट चलते हैं और खबरों का हार्ट सॉन्ग।

बस ही याद रह जाती है। और आज हम आप लोग को अनहील यूरमैन से हम आप लोग को दर्द भरी गीत को सुनाएंगे और खबरों का हार्ट सॉन्ग। अगर आपका दिल टूट गया है, प्यार में धोखा को पाया है, तो ये गीत आपको आप सबके लिए है। हेल फिल्मेन से सैन खसकाई दे प्यार में धोखा पाए से आप रेडियो के करीब रहना और इस गीत को हमारा प्रोग्राम को सुनिए। और अगर हो सके तब आपकी आँख में या आंसू निकल आए तो उसको पोछ देना दोस्तों। तो हम चलते हैं। जो कोई किसी से बेवफा किया है तो बेवफाई भी हुआ है, बहुत बेवफा लोग करते हैं, उस सब के लिए इस गीत है।

प्यार का दोस्तों दर भरी खबरों का हर सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाए हैं। किसी के दिल आपने तोड़ दिया है या आपके दिल टूट गया है तो आपको यहाँ पर हम जख्म देते हैं अपने गीतों से।

ये आम की याद नहीं आई तो अब किसी से हमें क्या कहना है। तो आपको खबरों का हर सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। वफा नाराज आई।

वफाना राज आई तुझे हर जाई खबरों का हार्ड सॉन्ग। आपके दिल अगर टूट गया है या टूटने वाला है या चोट लग गया है तो आपकी आंखों में हम आंसू नहीं प्यार देखना चाहते हैं। इस सॉन्ग से आपके जो दर्द है उसको हम भरते हैं, तो आओ मिलकर ये इस गीत को सुना जाए।

दर्द भरी खबरों का हर सॉन्ग्स किसकी किसी के, अगर जो आपके यानी कि दिल टूट गया है या किसी ने तोड़ दिया है तो मत घबराना, जो टूट जाता है वो एक दिन जुड़ भी जाता है। आपको हम बताते हैं कि तड़प तड़प के इस दिल को लोग याद करते हैं और इस दिल से पुकारते हैं, लेकिन जब तक उसकी समय नहीं आएंगे वो दिल नहीं जुड़ते हैं। तो एक और गीत की ओर चला जाए।

नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी समीर चाह रहा है। पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

मोहब्बत में, और ये सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। और उसके बाद तो हम चलते हैं और दर्द भरी गीतों का प्रोग्राम आज हम आज चलाते हैं।

जब याद आते हैं तो रोना पड़ जाते हैं। दोस्तों ये दर्द भरी सॉन्ग है जिसका दिल टूट गया है, अगर प्यार में धोखा भी मिल चुका है तो सबके लिए ये गीत है।

और आँख में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और क्या है।

ओ नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जा।

मैं तो लाई है कौनची मजेदार लाए ही और उस्तादो के उस्ताद हरीश वाले का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन की ओर। वो क्या गाते हैं।

थोड़ा और कठिन भिन्न थोड़ा, तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग्या, और रॉबी गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

गनवा तू और पांती मोरा ले जान सुगनवा तू। कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो, तो कुछ बैठक गाना और लोकल सॉन्ग अपने पुराने पुराने कलाकार सूरीनाम के हम याद करते हैं। और उसमें से एक कलाकार थी श्रीमती औधराजी घिसई डूबे उस्ताद हरीश बाल के साथ मेरे साथ साथ श्री राम प्रसाद राम खेलावन और मेरे ख्याल से ढोल बजाए थे रकीब ने। दोस्तों आओ सुना जाए।

और सरजू में करो स्नान श्रीमती औधराजी घिसई दुबे। उस्ताद हरीश बालक साथे साथ श्री राम प्रशांत राम खेलावन रकीब जी भी उसमें उस्ताद को उस्ताद है दोस्तों। तो हम चलते हैं उस्ताद देवा की ओर। देवी दीन घोरई इसका असली नाम है और जिसे लोग देवा के जान से जानते हैं। बहुत मशहूर थे अपने जमाना में, अभी तक उसका गीत बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद देवा क्यों रे।

और कन्हैया कन्हैया पुकारा करे देवी दीन घुराई, जिसे लोग डेबा के नाम से जानते दोस्तों। और इसे पुराने उस्तादों का गीत आप लोग को हम आज सुनाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं और बैठक गाना। और उस्ताद वो है जगदीश, जगदीश है दोस्तों। और ये कौन जगदीश है जो गाए है चिरैया बिन बोले, चिरैया बिन बोले, और ये जगदीश गाए है दोस्तों। तो जगदीश का ये सॉन्ग आओ सुना जाए।

और चिड़ैया बने बोले मैं ना जाऊंगी, भैया बोले हम ना जाऊंगी। तो उसके बाद हम चलते ही एक गीत है, ये गीत बहुत मशहूर थे, सूरीनाम देश में बहुत मशहूर गीत थे, और वो है शुकी अक्कल का दोस्तों। और हम खुद ही इस गीत को बहुत दिन हो चुका है नहीं सुना है, और आज रेडियो फाहून के माध्यम से हम आपको सुनाने चाहते हैं, और वो है सुकी अक्कल का ये जोंग है।

Als ze maar een goeie is, dan gaat het om wie dan ook mensen. Tja he, jo bhimile, lekin acha hona chahiye. To ye baat hai, suki kalka zong, dosto, koi zamana mein. Aur wo ani bodha. शायद पुराने लोग की तो पता होगा, हमारा यंगर को शायद मालूम बहुत कम होगा, लेकिन आनी बोधा भी अपने जमाने में अपने समय पे बहुत पॉपुलर थे भैया। कौन ऐसन जगह पे आनी बोधा का गीत नहीं होते थे, तो आप लोग को हम चलते हैं एक गीत की ओर। फन आनी बोधा का ये सॉन्ग है।

भी नहीं, ये कुछ पुराने क्लासिक ओल्ड यानी कि उस्तादों के जो उस समय पे कोई समय पे ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे दोस्तों। उसके बाद एक गीत को हमारा जो है भिखारी जी भी गाए थे, और वो समय पे कौन लोग है जो इस गाने पे नहीं नाचे थे या गुनगुनाए थे। तो हम चलते हैं उस्तादों के उस्ताद, और वो है भिखारी। भिखारी सॉन्ग को गए थे, आओ सुना जाए कौन से सॉन्ग। जैसे शुरू होगा आपको तो पता चल जाएगा।

भी छेड़ लेते हैं दोस्तों, स्कॉर्पियन भी लोग कहते हैं। और जो स्कॉर्पियन जब छेड़ लेंगे भैया, तब तो उसको दवा दारू कुछ और है, और जब बरैया छेदी उस तो फिक्स चलेगा, और फिक्स के बाद में स्लिंगोली चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, और वो भी हरिदत्त जयराम की ओर, और ये ना है हबड़ा कटावे वाला, ये कुछ और है दोस्तों, और सुना जाए।

और दोस्तों छोड़ दे पीना शराब के बाद चीत है, हम एक गीत और जाते हैं सनातन की ओर।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

1955 का ये सॉन्ग है। मोफी के नाम है मुनीम जी, मोफी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और डुएट सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत। एंड सेस का ये सॉन्ग है।

दिल के भंवरे करे पुकार, अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कहीं पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत है दोस्तों देखती होंदत एहसास फेर तक का मौफी का नाम है अनमोल घड़ी अनमोल घड़ी मौफी का नाम है महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों toen was ik nog niet eens geboren ik weet het niet ik heb deze film ook niet gezien maar हमारे दोस्तों जो है यहाँ पे रेडियो पर वो सब इस फिल्म देख चुका है और हमसे कहा कि जोनी जरूर चलाना तो हम जरूर चलाएंगे आओ मिलकर सुना जाए ये कालम नहीं है दोस्तों ये कुछ और है।

हम उड़ जाएंगे, मौफी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों। और इस फिल्म में इस गीत को गाए हैं शमशान बेगम और सोरेबा अम्बाली वाली। तो ये सब नाम तो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया, सहू राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाओ नेगेटिव हंड्रेड एंड ट्वेन फेफ्थ का ये सॉन्ग है दोस्तों। और इसकी ताव सुना जाए, दिस इज हेमंत दादा।

Jal. 1952 kan je zongen. Auro bachpan me mohabbat bahut log kiya hai. बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, तो हम आपको उस दौर उस यादों की ओर लेकर चलते हैं, जिस मूवी के नाम है दीदार। 1951 का ये सॉन्ग है। और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है, तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकते हैं।

किशोर बचपन के ये दिन आपको कभी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत के जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारे आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेंगे तो दुनिया बोलेगा कि सड़क के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुताएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है, उरन खटोला मूवी का नाम है।

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो। पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन सरनामी संगीत का प्रोग्राम में शुरुआत करने वाला हूँ हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का एक महान गायक जिस पे हमें नाज है, गर्व है, और बैठक गाना का एक महा महा गुरु उस्तादों का उस्ताद श्री जगदीश उदित राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, मेरे ख्याल से द मैन विद मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी, ये जगदीश प्रसाद उदित राम। मेरे तो सौभाग्य है कि महान उस्ताद के साथ में तीन बार मौका मिला इनके साथ कुछ अपना भी सुनाया और कुछ बजाया। उस टाइम में तांबूरेन ज़्यादा से ज़्यादा बजा रहा था और था इनके पूज्य पिताजी के बैंड जो रवि उदित राम के साथ वो उस जमाने में बनाए थे। और फकांसी से आया था जगदीश भाई, तो आफेन टू कॉम है इफ जैम मैथॉन्स। तो मिल के सुनते हैं ये महान फनकार के मधुर आवाज में भजन करे नित नेम से।

वाह वाह क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश उस्तादों का उस्ताद मास्टरो जगदीश उदित राम के ब्यूटीफुल आवाज में। कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो, जोर तोर से सरनामी संगीत चल रहा है। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड का, खबोरेन रेस डिस्ट्रिक्ट निकेरी उस्ताद सनातन जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं कि देश के लाज हमेशा बचाना चाहिए यारो।

They said nothing, you can beautiful as me, you decent to be an absolute honest. Now, I think it's a scene, carry a major absolute honest, I mean, live broadcast, or I have studio, Fahund and Hans Chelsea. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। कौर जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, आल्सो बोर्न इन हेथराइस डिस्ट्रिक्ट निकेरी, उस्ताद सत्यानंद रेखा जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये सुने ये आप ये ब्यूटीफुल सॉन्ग महन माय माय।

साधे श्री सत्यानंद रेखा जी के जवानी में ये अति सुंदर बयान को तैयार किया था यार ने। पावन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है, जो तो से आप बैठक गाना फ्रॉम सुरीनाम सुन रहे हैं। अगला बयान है नौजवान कलाकार फ्रॉम द एल्बम द बिगिनिंग। 16 साल का था ये नौजवान कलाकार उस टाइम में जब ये रिकॉर्ड को वो बनाया था। कैसे सपरी द ग्रेट सुन।

नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का दगड़े सुजल उमराव जी। अगला अभियान की तरफ बढ़ते हैं और अब लाते हैं आप श्रोताओं की सेवा में एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का जरा दिल थाम के बैठिए उस्तादीन श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी के ब्यूटीफुल आवाज में क्या गाती थी वो मिशन हान स्टेज और द ग्रेट उस्तादीन या अद्भुतिक फन जेगे ook van heel dichtbij gekend natuurlijk, een paar keer ook met haar op mogen treden. Bahut kuch sikha ye mahan ustadin ji se mein. Rishte to mein, rishte mere, ye to meri, mera phua lagti thi. To milke sunte hai, dulha bane, ek jabardast kalakara.

Shabanshi, Den Haag Sherka, The Lion of Bait, Ganao, Staduka, Stadi, Sri Davinder Singh, Sivnajika, Bilkul, Naya, Super Hit Song, Sutena Devi. अगला बयान सुनने को जा रही है आप सभी को एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का उस्तादीन चंद्रमती कंधाई आराम के साथ ही

Hei, shaba, shaba, shi, mashur ganewali, hamare Surinam desh ka ustadin Chandravati Kandhai. आज का इस हसीन प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं, हमारे सरनामी संगीत का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और वो सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को द किंग ऑफ बैठक गाना उस्ताद का उस्ताद माएस्ट्रो संदीप बदलू जी।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। Natuurlijk te beluisteren via internet के लहरों द्वारा foundfm.nl पर ये कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, नतीलक आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। ऑफ कोर्स है नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत है लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो दंत आल्टाइट नार जली एंड वसर्ख हीर नतीलक एल्क दग 24 आवर्स फॉर लाइक म्यूजिक इंफॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, या तो आप अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर, या जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि कुछ हो सकता है ना। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। की फाइट सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बैंस ऑफ द ईस्ट प्लांट्स। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अनाउंस डेंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। सभी जानकारी बेल फमांडा तो फ्रेडा फन नेग यूर्स मॉर्गस तो फेव यूर्स मेडाक्स ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स। कंटोर न्यू 070-362-2047 एंड स्टूडियो 070-362-2077। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोग के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हम लोगों का फुल टीम की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। बेंटी नोख इन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने। और अगर हो सके तो कोशिश करना औरों को भी बनाएं। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है, तो आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने औरों को भी बनाए ना। हाँ, सभी जानकारी न्यूज़ीव तक दरिफ़ेंस तक तो इंटरनेशनल फेयर तक बराबर करें। एक ही दम लेकर चलते हैं हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का। मिस्टर इंडियन पॉप म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक और लाते हैं आप सभी के सेवा में हमारे हॉलैंडेश का जबरदस्त गायक मैस्ट्रो शेखर कुमार। और वो सुनाते हैं आप सभी को मेरे सामने वाले।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को मास्टर शेखर कुमार और साथ दे रहा था रंजय राकेश अंत राहुल। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है अगला बयान चांद मेरा दिल और एक जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का मास्टर बॉबी।

Amansje, Giovanniste, Gaik, uit de jaren 80, 90, maestro, Subhas, Supersaat, Rest in Peace, Music by the Strangers. Kya baat hai, agla bayan ki taraf badhte hai, aur mera hi awaaz mein aap ye ati sundar bayan ko sunenge. और अगर आप मुझ से सुनिए तो दर्द कुपले तो आई गनुआ के हम अपने से लिख रही बात ऐसा न भाई लाज हम लोग गए रही गनुआ अप लेवे स्टूडियो हुआ में तो म्यूजिक डायरेक्टर मास्टरो जेम शिव प्रसाद ने तीन कुपलेत बनाए गनुआ गनुआ ओरिजिनल दुई कुपलेत है तो सब के दुकान प्रिंस अखराख स्विमर गार्डन में मैं बैठ के उसी दिन ये दर्द कुपलेत को लिखा बैठाया और गा दिया तो सुनिए मेरे ही आवाज में गोरी बुलाए दादा हेमंत कुमार के याद में म्यूजिक अरेंज अंत री अरेंज बाय मास्टरो जेम्स शेखर शिव प्रसाद स्ट्रेंजर्स ऑर्केस्ट्रा का बैंड लीडर

बस क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त कासे को सॉन्ग स्टाइल में आप सुना, और देखा जाए बहुत ही नौजवान कलाकार कुछ थे, द कॉलेज ग्रुप आईडियार तख्त, और गाने वाली थी सिलवा के माय, मेर बकें था सिलवा के माय ना जी लग मुफ्रो इंद्रा राम चरण जी। तो साथियों टाइम फॉर सम शेर शायरी है। अर्ज किया है यारों क्यों किस किस को दोगे दुहाई अपनी दोस्ती और मोहब्बत की, किस किस को दोगे दुहाई तू अपनी दोस्ती और मोहब्बत की, यहाँ तुम्हारी सुनने वाले बहुत है पर समझने वाले कोई नहीं। The two most dangerous weapons in the world other than nuclear bombs are one, a girl's smile, two, a girl's tears. पुराने रबतों को फिर नए वादे की ख्वाहिश है यारो, पुराने रबतों को फिर नए वादे की ख्वाहिश है, जरा एक बार फिर कह दो मोहब्बत मर नहीं सकती, मोहब्बत मर नहीं सकती। याद आए जो तुम हमको अभी दिल में हुई हलचल तभी, याद आई जो तुम हमको अभी दिल में हुई हलचल तभी, लफ्जों को थाम लिया जुबान ने, लफ्जों को तो थाम लिया जुबान ने, हाय कहना है कुछ तुमसे लेकिन फिर भी कभी। दर्द की हर हद से अब गुजर गया हूं मैं, दर्द की हर हद से अब गुजर गया हूं मैं, फिर कभी ना सिमटूंगा यूं बिखर गया हूं मैं। कितना मुश्किल है जिंदगी का ये सफर, कितना मुश्किल है ये जिंदगी का ये सफर, खुदा ने मरना हराम किया, खुदा ने मरना हराम किया और लोगों ने जीना हराम किया। ये थे कुछ शेर आगे के कार्यक्रम में, कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। एक और जबरदस्त गायक जो बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए, मैस्त्रो शहीद वाहिद हुसैन, म्यूजिक रे अरेंज बाय छोटा भैया उनका, मैस्त्रो शारीफ वाहिद हुसैन, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान। सपने तो हम सबको जरूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सभी जानकारी है, जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था स्वप्न विज्ञान, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और आगे आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक कारण कि जो हमें सपने आते हैं उन सब का प्राकृतिक कारण क्या है। प्राकृतिक कारणों के अनुसार कफ पित्त वात का परिणाम अधिक होने पर मानव को अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं कि कई बार जैसे हम बीमार होते हैं उसके अनुसार भी हम सबको सपने आते हैं।

कफ प्रभाव धीन, सफेद चीजें गुफा तारों का समूह, मेघ मंडल स्फटिक मणि संगमरमर, दिव्य पदार्थ फल यज्ञ सामग्री यज्ञ मंडल सुंदर आभूषण। अगर कफ की बीमारी हो तो आप सबको ऐसे सपने दिखाई देंगे ज़्यादातर। वात प्रभाव दीन, ऊंचाई पर चढ़ना आसमान मुक्त संचार उड़ना। पित्त प्रभाव दीन, आग पीली पृथ्वी तक्षिण शस्त्र जलती दिशाएं अशोक वृक्ष आघात गिरना नाश्ता करना क्रोध करना। दू स्वप्नों का परिवाह।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दुःस्वप्नों का परिहार। लाल चंदन की समिध्या घी में डुबोकर 1000 गायत्री मंत्र का हवन करना। दूसरा, शुचि मूर्त होकर पूर्वाभिमुख आसन होकर अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस एव नारायण इन 8 नामों का उच्चारण 10 बार करें। तीसरा, भक्ति भाव से विष्णु नारायण कृष्ण माधव मधुसूदन हरि नहरि राम गोविंद दधिवामन इन 10 नामों का 100 बार जाप करें। चौथा, निष्ठापूर्वक 1000 श्री कृष्ण का जाप करें। पांचवा, शामी अद्भुत वनस्पति पूजन करें तथा सोने से पहले शामी सिराने रखें। छठा, सूर्योदय से पूर्व पूर्वाभिमुखी होकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। सातवां, शुचिमूर्त होकर ओम नमः मंत्र के साथ शिव दुर्गा गणपति कार्तिकेय दिनेश्वर धर्म गंगा तुलसी राधा लक्ष्मी सरस्वती जी का जाप करें। आठवां, ओम ही श्री काली दुर्गति नाशिने महामाया स्वाहा का 10 बार जाप करें। नौवां, ओम नमो मृत्युंजय स्वाहा का 10 लाख जाप से साक्षात मृत्यु लौट जाती है। दसवां, प्रातः प्राणायाम करें या तगर के हरे पत्ते चबाएं। सुनने वालों, ये सब था दुख स्वप्नों का परिहार, यानी जो दुख वाले सपने होते हैं उनका निवारण कैसे करना चाहिए।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। स्वप्नों के प्रतीक, स्वप्न मानव जीवन को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम वरदान है। यह देवी वरदान चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही मिला है, और ये खाली वरदान इंसान को ही भगवान ने दिया है, जो कि उसके मानव जीवन को सर्वोत्तम निधि कही जा सकती है। स्वप्नों का आधार काम भावना स्थिर की है। उनके अनुसार वास्तविक जीवन में जितने भी उपकरण हैं वे दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो पुरुष चित्त प्राकृतिक और दूसरे स्त्रियोचित पुरुषोचित प्राकृतिक। जैसे आप सब जानते हैं कि भगवान ने भी स्त्री और पुरुष दो जीव बनाए हैं, तो उसी के आधार पर शास्त्र विज्ञान भी अपना अलग अलग नीति देता है। पुरुषोचित प्राकृतिक, अस्त्र शस्त्र पुरुष वस्त्र मशीन नक्शा पुल चाबी लकड़ी पेड़ संदूक छाता आदि। और स्त्रीयोचित प्राकृतिक है दरवाजे ताला गुफा टोकरी कपड़ों के उपकरण बर्तन मशीन आदि। यह एक जीव की सृजनात्मक शक्ति का नमूना है। सिंह कभी झुंड में नहीं रहता, वह अकेले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सुनने वालों, जैसे संत कबीर जी ने कहा है कि हीरो की ओवरी नहीं मूल्य गिरा नहीं पाती, सिंहों का लहड़ा नहीं साध ना चले जमाती।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, क्यों आती है नींद हमें, कि हम मनुष्य लोगों को कभी ज़्यादा नींद आती है, कभी कमती नींद आती है, इसका भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होता होगा ना। यदि हम जागते हुए भी लेटे रहें तो भी हमारी थकान दूर हो जाती है, वैसे भी सोते समय हम पूर्णता स्थिर नहीं रहते, हिलते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, जो मांसपेशियों की कसरत कराने के लिए करते हैं ना, ना कि उन्हें आराम देने के लिए। अतः हमारे शारीरिक नहीं अपितु मानसिक आराम की अवस्था होती है, परंतु सोते समय मस्तिष्क सुस्त नहीं वरन अधिक क्रियाशाली रहता है। सुनने वालों, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा काम करता है, और हम सोचते हैं कि शायद हम सो रहे हैं तो दिमाग भी थोड़ा शांत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम काफ़ी समय तक अकेले रहते हैं तो हमारी नींद भी काफ़ी घट जाती है, यानी जितने कम लोगों से हम मिलते हैं उसी अनुपात में हमारी नींद भी घट जाती है। वैसे हम अपने जीवन को एक तिहाई से अधिक भाग सोने में ही बिता देते हैं। नींद कई रोगों के निवारण की रामबाण औषधि है।

सुनने वालों, ये है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सामूहिक स्वप्न। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर स्वप्न देखते हैं। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अपने सपनों को व्यक्तिगत नहीं अपितु सामूहिक घटना के रूप में ही देखते हैं और व्याख्या करते हैं कि वो इकट्ठे सपने देखते हैं और उनका फिर आपस में बातचीत करते हैं कि हमने कौन सा सपना देखा। यूरोप के एक छोटे से गांव कार्सिका में सामूहिक सपना देखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। वहाँ सब लोग एक पूर्व निश्चित विषय के बारे में उसी विषय पर स्वप्न देखते हैं जो अगले दिन सुनाते हैं।

हमारी अंतरात्मा तथा हमारे स्वप्न। स्वप्न अवस्था में मस्तिष्क को चेतनात्मक पोषण मिलता है। मानवीय मन जितना शुद्ध एवं पवित्र होगा, उसका परिणाम में स्पष्ट सुखद भविष्य एवं गुण रहस्य प्रकट करने की समर्था स्वप्नों में समाविष्ट होती है। भारतीय विद्वान स्वप्न को देवी शक्ति की प्रेरणा मानते हैं। सर्वगस आत्मा हमें अपने में कुछ आदेश देती है। यह सर्वगस आत्माएं हमें आने वाले संकटों की पूर्व सूचना भी देती है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि कई बार सपने हमें आते हैं, जो कई बार घटना घटने वाली होती है उसके बारे में हमें संकेत भी मिल जाता है। हमारी अंतरात्मा हमारे स्वप्न के दौरान अधिक साफ शब्दों में बातचीत के अतिरिक्त और कभी नहीं करती। अंतरात्मा की आवाज़ स्वप्न के दौरान साफ सुनाई देती है। यदि हम फिर भी अपने सपनों के संदेश पर ध्यान ना दें, उन्हें समझने का प्रयास ना करें, तो हमसे अधिक मूढ़ इंसान कोई नहीं है। हमें अपने मार्गदर्शक इन सपनों को भूलकर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग हमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन हमारी भीतर की आवाज़ की तुलना में कम सहायक सिद्ध साबित होते हैं। हमें कोई और इतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकता जितनी अच्छी तरह हम स्वयं समझ सकते हैं। अपनी आदतों, परेशानियों, उनके कारणों आदि को जितनी अच्छी तरह हम जानते हैं, उतनी अच्छी तरह कोई और नहीं जान सकता। सुनने वालों, वो तो हमें मालूम ही है कि सबको अपना स्वभाव, अपनी आदतें पता होती हैं, और कोई दूसरा अच्छी तरह नहीं जान सकता। और दूसरा अगर जान सकता है तो वो होती है माँ। माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चों की आदतें कैसी हैं। इसलिए हमारे सपने ही हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, हमें सर्वोत्तम मार्गदर्शन दे सकते हैं। जिस युग में लोग सपनों की भविष्यवाणी और इनके अर्थ लगाने को एक प्रकार के ज्योतिष का दर्जा देते हैं, उस काल में वे सपने संभाल कर रखते हैं। ऐसा करने के लिए ग्रीस और मिस्र में बने मंदिरों जैसी इमारतों में जाना पड़ता था। सपने देखने के उद्देश्य से गए लोग वहां जाकर कई दिनों तक आराम करते हुए विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास आदि रखते थे। जब सपने देखने का समय आता था तो वे सपने देखने के लिए वहीं पर सो जाते थे। सोते सोते वे सपने में किसी देवी देवता या देवदूत के आने की प्रतीक्षा करते थे। यह तो केवल विश्वास की बात है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में भी नहीं है।

मोती युग सीप केवल गहराइयों में ही मिलेगी, उथले जल में तो केवल मछली ही मिलेगी। सपने मांगने का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रार्थना। सुनने वालों, जैसे हम समुद्र में जाएं या कहीं भी जाएं, वहाँ पर ऊपर ऊपर मछली मिलेगी। गहराई में जाएंगे तभी हमें सीप के मोती मिलेंगे। हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरी सहायता करो। आप भक्तों की पुकार सुनकर पल भर में उनकी सहायता हेतु प्रकट हो जाया करते हो। कृपा करके मुझे एक ऐसा सपना भेजने की कृपा करें जिससे मुझे अपनी समस्याओं का समाधान और सामना करने में मदद मिले। धन्यवाद। चाहे यह कोई सरल कार्य नहीं है, फिर भी प्रयत्नशील एवं कर्मठ लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। हम सब की राहें चाहे अलग अलग हों, परंतु हम सब की मंजिल केवल एक ही है। सफलता भले किसी को भी मिले, परंतु विजय तो मानवता की ही होगी। अंतरात्मा कुछ सीमा तक सचेत है और मनुष्य को गलत कार्य करने से रोकती है। जब तक शरीर में आत्मा का वास है, हमारा अस्तित्व है। और जिस पल आत्मा यह बंधन, यह पिंजरा तोड़कर उड़ गई, समझे हम भी मिट्टी में मिल गए। स्वप्न में इसे देखने का अर्थ है कि सपना देखने वाले का व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण हो गया और उसने अपनी उन्नति की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। पुरुषों के सपनों में अंतरात्मा एक बुद्धिमान वृद्ध या महान पिता या स्त्रियों के स्वप्न में महान माता के रूप में प्रकट होती है।

सुनने वालों, ये है फहन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सबका हिंदुस्तानी रेडियो जो आप सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेकर आता है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान। तो हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों, सपनों की गूढ़ परिभाषा। इनमें शब्दों व आवाज़ की जगह दृश्यों, चिन्हों व लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें हम धीरे धीरे ज्ञात अर्थों में से अधूरे, अपरिविक व अनुचित अर्थों को हटाते हुए सही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अगर दृश्य ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यही दृश्य सब विचारों, बातों व संकेतों का केंद्र तथा उसका उद्गम स्थल है। दृश्य एक इंसानों के विचारों व उसके अस्तित्व का फरीक होता है, परंतु यह मौलिक कदापि नहीं है। यही दृश्य कुछ वास्तविकता तथा कुछ चिन्हों के रूप में हमारे स्वप्नों का निर्माण करते रहते हैं। यही स्वरूप है हमारे सपनों का। आमतौर पर दिन के समय हम अपने हृदय की बात सुनते हैं व मानते हैं, और हमारी भावनाओं का रात को ही स्वयं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। चेतन मन कहता है।

मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अस्वर हो सो साधु कोई एक। जागते समय भले ही दिमाग जीत जाए, परंतु सोते समय मन की ही विजय होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों व आविष्कारों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे बहुत सोते थे, प्रायः दिन के समय भी। कई बार हमें अपने मस्तिष्क से संगणक अर्थात कंप्यूटर की तरह इनसे भी सपने व मदद मांगनी पड़ती है।

बौद्ध धर्म तथा स्वपन। इस धर्म की सपनों से पहचान इसके प्रवर्तक सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। जब लुम्बिनी में सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही उनकी माता रानी महामाया को स्वप्न में एक दिव्य सफ़ेद हाथी दिखाई दिया था। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि विलियम वार्ड्सवर्थ का विचार था, जीवन एक स्वप्न है, केवल एक स्वप्न। जिस विश्व में हम विचरण करते हैं उसके अतिरिक्त एक धारा पर एक और भी अदृश्य विश्व है जिसमें देवता या आत्माएं विचरण करती हैं। यहाँ पर हम अपने मृत रिश्तेदारों के साथ मानसिक संपर्क स्थापित करते हैं जिससे वे हम पर प्रसन्न रहें तथा हमारा ध्यान रखें और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें और रक्षा करते रहें। हमारे अंतिम समय में प्रायः हमारे कर्म प्रतीक रूप में हमारे सामने आते हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक था आज का प्रोग्राम। अगली बार मैं आपके साथ फिर उपस्थित होंगी और सपनों के बारे में थोड़ा सा और आपको जानकारी मिलेगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

0: महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरुमदेवा सर्वकार्यशु सर्वदा रुद्र रूप मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा। अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए स्टूडियो में। और अभी तो शांता जी और राजेंद्र जी जो अभी तो स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए हैं, पर शांता जी अपना कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ सुनने वालों, संजय जी हमने तो अपनी हाजिरी दे चुकी हूँ और आप मेरी को सुन रहे हैं, तो यहाँ से मेरे भी शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम और सभी को सत श्री अकाल है इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
0: शांता जी ऐसा करते हैं कि पहले जो हमारे सुनने वालों जिस गीत का इंतजार करते हैं हर सप्ताह की तरह, जो अभी उदास बैठे हुए हैं, तो क्यों ना उस गीत को पहले चला देते हैं, फिर कार्यक्रम का और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम बड़े मज़ेदार कार्यक्रम है, तो क्यों ना पहले वो गीत चला दिया जाए।
1: हाँ जरूर से यहाँ से चला देंगे कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। राम जी तो सबका बेड़ा पार करते हैं। सुनने वालों मेरा नमस्कार, फाउंड हिंदुस्तान रेडियो के सभी श्रोताओं को यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। आज हम अपना विषय लेके आए हैं एक बेटी का पिता, और इसके बाद कुछ और भी रहेगा कार्यक्रम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए संजय जी चाहे कुछ अपना,
1: संजय कुछ अपना बोलना चाहते हैं। दोस्तों आज का विषय, जैसे कि अभी आपने सुन ही चुके हैं कि एक बेटी का पिता, पर अभी तो उसे और हम सब छलांग लगाने वाले हैं, पर आज का ऑफिशियल जो विषय रखा गया है, जो हमारे खोजी सेना द्वारा आज के लिए हम सबके पास रखा गया यहाँ है, तो वो है कि एक ब्राह्मण का महत्व, और उस ओर अभी हम सब काफ़ी जानकारी लेकर आए हैं कि ब्राह्मण का महत्व, उसके बारे में हम सब अभी आपको जरूर सुनाने वाले हैं। पर राजेंद्र जी, पहले तो ये गीत जो हम सब अभी सुने कि तेरा राम जी कड़े बेड़ा पार, तो ये गीत सुन के आपको कुछ होता है या नहीं? आपको ये नहीं लगता कि अब ज्योति का प्रकाश प्रारंभ हो गया?
0: हाँ, ज्योति का प्रकाश प्रारंभ हो गया, और जो बहुत ही सुंदर सा जो गाना है वो है कि बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं।
1: बेटियां तो बाबुल के रानियां हैं।
0: हाँ,
1: क्यों ना हम कुछ उसके बारे में सुनते हैं, तो फिर गीतों के और जो हमारे शांता जी अपने पिटारा से भर के लाए हैं उस ओर बढ़ेंगे।
0: क्यों ना गीत से पहले कुछ ना बेटी के बारे में सुना जाए, इसके बाद ही आगे कार्यक्रम रहेगा। एक बेटी ने अपनी बेटी की, एक पिता ने क्या किया कि अपनी बेटी की सगाई कराई, और लड़का बड़े अच्छे घर से था तो पिता बहुत खुश हुए। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव देख के बहुत अच्छा लगा, तो पिता के सिर से बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन शादी से पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को खाने पे बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह ना कह सके। लड़के वालों ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया था।
1: यानी कि चीनी वाले चाय से दूर?
0: हाँ, क्योंकि
1: ऐसा क्यों?
0: डायबिटीज था, शुगर।
1: डायबिटीज किसको कहते हैं शांता जी? तो उसके यानी कि बेटी का पिता का वो मुसीबत था।
0: हाँ, लेकिन लड़की के होने वाले ससुराल में थे तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली। उन्होंने नहीं बोला कि मेरे को डायबिटीज है, क्योंकि बेटी के ससुराल में थे इसलिए चुपचाप चाय ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौंक से गए। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि चाय में तो चीनी थी नहीं, तो उनके लिए तो अच्छा रहा।
1: हाँ, क्योंकि वो उसे डायबिटीज के मुसीबत था।
0: हाँ, और उनको इलायची भी चाय में थी तो स्वादिष्ट रहा।
1: ऐसा तो
0: हाँ, तो सोच में पड़ गए कि ये लोग हमारी जैसी चाय पीते हैं। उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारी जैसी चाय पीते डायबिटीज वाली।
1: हाँ जी,
0: चल जाएगा। दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा। दोपहर में आराम करने के लिए दो तकिया पतली चादर उठा दे ही सोफे पर पानी पीने को दिया गया। फिर उनको क्या किया कि दोपहर में दो तकिया दी पतली वाली, और चादर उठते ही जैसे वो सौंफ का पानी रखा था वो दिया गया पीने के लिए। वहाँ से विदा लेते समय,
1: राजेंद्र जी ये सौंफ का पानी क्या चीज़ है?
0: सौंफ का पानी होता है, एक सौंफ रहा उसका पानी पियो या सौंफ खाओ खाना खाने के बाद तो डाइजेस्ट हो जाए।
1: रेस्टोरेंट में आप इंडियन रेस्टोरेंट में सब जगह रहता है,
0: और चीनी थोड़ा रहा
1: ओ
0: तो डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा रहा, तो चाहे पिए खाए।
1: ये एक चीज है वो मुफ्त में देता है कि उसमें
0: मुफ्त
1: में
0: वो बाहर रखा रहता है, वो जाते समय थोड़ा खा के।
1: पर शांता जी इसके बारे में कुछ और कहने वाला, क्योंकि इन्होंने चुप चुप करके और लिया था मेरे ख्याल से वहाँ होटल से। शांता जी ऐसा हुआ कि नहीं?
2: और यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ हमने खरीद के भी रखी है
1: घर से।
2: हाँ, दुकान से खरीद कर घर पे रखी हूँ।
1: यहाँ पर
0: मिलता है।
2: यहाँ मिलता है। हाँ,
1: वही तो बात है राजेंद्र जी, यहाँ क्या नहीं मिलता है?
0: यहाँ सब कुछ मिलता है,
1: क्योंकि ये एक देश है जहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। ये एक देश, हर बार हमें तो लोग कहते रहते कि ये एक स्वर्ग के समान है ना। यहाँ पर 12 मंजिल पे आप नल खोलो तो पानी गिरता है, कभी बिजली का कमताई नहीं, और जब चाहे तब यहाँ तक कि सौफ भी, सौफ कहते हैं ना,
2: सौफ, सौफ,
1: तो जो हम छुप छुप करके वहाँ और होटल में लेते थे, यहाँ पर हमारे पास भी हो सकता था।
2: नहीं, वो छुप कर नहीं, वो ऐसा रखा है कि आप ले सकते हो। हाँ, पचौनी,
1: पचौनी उसे कहते हैं। तो
2: वो दिखते हैं जैसे कोमेन, कोमेन का दिखते हैं
1: ऐसे, कोमेन,
2: कोमेन,
1: कोमेन,
2: जीरा, जीरा,
1: जीरा को कहते हैं।
2: जीरा ब्राउन है और सौंफ हरा,
1: हरा होता है। तो ऐसा हुआ राजेंद्र जी, आगे का वृतांत बढ़ने से पहले क्यों ना हम सब शांता के पिटारा से
0: सुंदर से नगमा की ओर बढ़ा जाए।

0: ये बाबुल तो बेटियाँ की रानियाँ हैं, बहुत ही सुंदर नगमा रहा। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्यों ना बेटी के बारे में पूर्ण रूप से वहाँ से विदा लेते समय उनसे पिता से रहा नहीं गया तो पूछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये परफेक्टली आपको कैसे पता चला। तो बेटी की सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फोन आया था।
1: किसका फोन आया राजेंद्र जी?
0: उनकी बेटी का फोन आया था कि मेरे
1: बेटी ने सास को लगा दिया था।
0: हाँ, पहले लगा दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनसे कहा कि मेरे पापा के स्वभाव से बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, प्लीज अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पिता की आंखों में वही पानी आ गया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हाल में लगी अपनी स्वर्गवासी माँ की फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो लड़की का पिता बोली, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर में कहीं नहीं गई, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में रहती है। और फिर पिता की आंखों में आंसू झलक गई और वे फपक फपक के रोने लगी।
1: ऐसा फपक फपक के
0: रोने लगी।
1: शांता जी, आपको आता है ऐसा रोना?
2: खुशी से।
1: हम लोग कहते हैं सुसुक सुसुक के, पर सुसुक सुसुक के ये नहीं, फपक फपक के रोने लगे।
0: फपक फपक के रोने लगी।
3: खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी, ऐसा ना राजेंद्र जी? खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी, मैंने बस मुस्कुराया और पापा ने पूरी दुनिया दिला दी।
0: अरे वाह,
1: या क्या बात है शांता जी। राजेंद्र जी, इस पे तो मेरा दिल कहता कुछ कहने को।
0: हाँ, जरूर
1: ना, पर ये तो कोई कही नहीं कि संजय आप कह दो। तो दोस्तों जरूर इस पे मैं, जैसे शांता जी ने अपना संदेश सुना है, एक पिता अपने बेटी के जो संबंध होता है ना, जब एक कन्या के जन्म होता है तो पिता तभी से अपना बेटी को एक बसखैरमंद रूप से और उसे ध्यान देते रहते हैं ना,
3: फूल की तरह।
1: हाँ, और ऐसा हुआ राजेंद्र जी, चलो एक वृतांत की ओर बढ़ जाते थोड़ा से, पर अभी तो आपको और सुनाना है।
0: हाँ, थोड़ा सा है, इसके बाद आप वृतांत में बढ़। और जब वो फपक फपक के रोने लग पड़े तो दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है इस दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं दुनिया के सभी माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिलों में रहती है।
1: ऐसा
3: क्योंकि बेटी पहचान होती है माँ बाप की, बाप की
1: बेटी पहचान
3: होती है।
1: राजेंद्र जी, ऐसा हुआ कि मैंने देखो, ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं तो उसी कारण नाम नहीं लिया जाता है
0: जी।
1: पर ग्रंथों में लिखा गया है कि घर पे जब कन्या जन्म लेती है ना, कन्या जब जन्म लेती है तो जो पितरों होते हैं ना, पितरों कहते हैं जो अपना जीवित है
3: जी।
1: जिनका और काम क्रिया किया गया है तो वो पितर और योनि में चले जाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि उसके परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया
3: जी।
1: ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसलिए खुश होते हैं कि उसकी परिवार से और जाकर के बाद में जब बेटी कन्या जो जाकर के बेटी का रूप धारण करके और एक दिन उसका विवाह होगा, कन्या दान होगा, औरों का परिवार को बढ़ाएगा, ऐसा है ना,
3: वो मध्यम होता है,
1: तो वो है उसी कारण वो अति प्रसन्न होता है।
3: ये एक कुल ने दो कुल का नाम बढ़ाता।
1: एक परिवार में जब 100 बेटा ने जन्म लिया
3: जी,
1: तो 100 बेटा होने पे परिवार आगे और आगे नहीं बढ़ सकता जब तलक एक
3: बेटी ना हो।
1: हाँ राजेंद्र जी, हम सब एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे, तो फिर हम इसके बारे में भी कुछ और बातचीत होगा।
0: जरूर जरूर।

0: जी संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: नहीं, कहना यही रहा राजेंद्र जी कि ये सुंदर गीत जो बाबुल प्यारे और शांता जी इस पे तैयार हो गया है कुछ करने कहने के लिए, तो उसकी
2: फेडर ऑन कर दे,
1: फेडर ऑन कर दो। तो शांता जी आप इस पे क्या कहने वाले?
2: पहला तो मैं कहती हूँ कि गीत जो है, आवाज़ जो है, जो अब दुनिया में नहीं है और फिर भी अपना मीठी ये सुरीली आवाज़ अपना छोड़ गए हैं।
1: सही बात, ये सुरीली आवाज़ जो दुनिया की एक स्पेशल आवाज़ है जो जिंदगी भर जब तक दुनिया रहेगा तब तक ये सुना जाएगा ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और ये गीत जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत से सारे ऐसे बातें याद आ जाती है।
1: बहुत से सारे
2: और इतने गाने हैं जी, जो एक्टी है ना हेमा मालिनी जी,
1: जी
2: वो कितनी खूबसूरत है,
0: और आपसे कम।
2: और फिर ये गीत जो पहले कोई विवाह करते थे सुरीनाम में ना,
1: तो रेडियो से चला,
2: रेडियो से बहुत चलता था ये गीत।
1: हाँ, क्योंकि ये गीत जो पहले एलपी ही होते थे ना, वैसे जैसे आजकल रेडियो चलता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले और तरीका था, और मेरे ख्याल से कितने खींच गए होंगे
2: वो तो है
1: ये गीत सुनाते सुनाते।
2: ये फिल्म हमने देखी है मेरे अपने बाबूजी के साथ, परिवार के साथ, मेरे पापा जी हम सभी को गाड़ी में बैठाए कर ले जाते थे फ्लैम्बोयंट वीडियोटेक में,
1: ड्राइव इन सिनेमा हाँ, वो वहाँ पर जा करके देखे,
2: वहाँ पर हमने देखी ये पिक्चर
1: वहाँ पर जा करके देखे। राजेंद्र जी इस पे मैं कुछ और कहना चाहूँगा,
0: जरूर,
1: क्योंकि ये आज जैसे कि अभी आपने वृतांत बताए कि एक बेटी अपने पिता के लिए कितना और ध्यान देते हैं, कितना उसे और ख्याल करते हैं ना, ऐसा होता है अभी पिता भी अपने बेटी के भी और जब से जन्म से उनके ध्यान देते रहते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का और एक लड़की से प्रेम हो गया,
2: अच्छा
1: प्रेम हो गया, और प्रेम से प्रेम के बाद में आ जाता है प्यार, तो लड़का लड़की में प्यार हो गया और एक दूसरे के बिना जीना अब मुश्किल हो गया।
2: हमने दो शब्द सुने आपके मुखारबिन से, वो है प्रेम और प्यार, इसमें अंतर है?
1: अभी तो अंतर इसमें बहुत है, पर अंतर की ओर बढ़ेंगे तो आज हमारे कार्यक्रम नहीं है,
2: अच्छा
1: पूरा होगा,
2: तो इसमें हम इस बात पे हम गौर करेंगे अगले बार,
1: गौर जरूर हम लोग करेंगे, पर अभी देखेंगे, अच्छा, अभी प्रोग्राम बाकी है शांता जी। तो राजेंद्र जी ऐसा हुआ, लड़का लड़की से जब प्यार हो गया तो एक दूसरे बिना जीना भी मुश्किल हो जाता है, लड़का और जा करके लड़की के पिता से कहते कि मुझे शादी करना है,
2: अच्छा जी।
1: पर एक पिता हर बार देखते हैं कि किसे अपना बेटी का और हाथ दे
2: जी,
1: क्योंकि शादी करना तो शायद आसान होगा पर निभाना कोई भी नहीं चाहते है कि अपना बेटी के हाथ ऐसा व्यक्ति के पास दे जो थोड़ा से निभाने में शायद ना कर पाए। तो ऐसा हुआ, लड़का ने गया और पिता ने बिल्कुल मना कर दिया, उन्होंने कहा कि इससे तो मैं अपना बेटी का हाथ दूंगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि उसमें कुछ बात होगा, और लड़की प्रेम में पागल था, अपने पिता को फोर्स करते हैं, पिता को फोर्स करते हैं कि पापा मेरा शादी करा दो
2: जी।
1: पिताजी जो बेटी को ना भी नहीं कह पा रहा है
2: जी।
1: और लड़का जो आकर के कहते हैं कि हमारा शादी करा दो, तो दोनों से पिता ये कहते हैं कि शादी करा दूंगा पर एक शर्त पे, शर्त लगाया उन्होंने, कहा शादी कराना है एक शर्त पे, आप जाकर के बारात लेकर आओ, पर बारात लेकर आएंगे तो कोई बूढ़ा साथ में नहीं रहना चाहिए, बूढ़ा साथ में नहीं रहना चाहिए,
2: ये पापा का शर्त है,
1: पापा का शर्त
2: जी।
1: लड़का जाते हैं अपने घर से और कहते हैं कि मान गए और शादी के चलो सब तैयारियां करते हैं और अपने पूरा परिवार बैठा करके और वहां पर वृतांत को बताते, पर करते कि लड़की के पापा ने, लड़की के पिता ने एक ऐसा शर्त रखे है कि शादी करना है बारात लेकर आना पर कोई बूढ़ा साथ में नहीं रहेंगे। जब इस बात को लड़की के पिता कह रहे थे लड़का से, तो लड़का कह दिए कोई ना, सभी बूढ़ों को घर पे रहना है, मौसम ठंडी है, क्यों इधर उधर जाना। और जब यही बात वो जाकर के अपने घर से कहते हैं तो वहां पर पूरा परिवार और थे, और उसमें एक था नाना। नाना पता आपको कौन है?
0: हाँ।
1: मम्मी वाला पापा।
0: हाँ।
1: तो नाना कहते हैं नाना चाहे जोन हो जाए पर हमें तो जाना है।
2: हाँ, ये नाना कहते हैं।
1: ये नाना, नाना कहते जी। तो लड़का ने कहा नाना जी मान जाओ, अभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बड़ा मुश्किल से माने हैं, आप घरे रुक जाइए। नाना कहते हैं चाहे मुझे बोरी में भर के ले जाओ पर मुझे तो जाना। लड़का बहुत समझाए पर नाना माना ही नहीं,
2: बोरी
1: हर बार ना ना
2: ना ना
1: ना। तो उन्हें लड़का कहते भाई भरो इसे, बोरी में भरो और डिग्गी में डालो,
0: डिक्की में डालो गाड़ी की,
1: डिक्की में। और चले गए बारात लेकर खूब सज धज के जाकर वहां पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे बारात लेकर, अब वहां दुल्हन के द्वार बिल्कुल पहुंच गए, तो दुल्हन का पिता किसी को भेजते हैं, बोलते हैं एक शर्त और। वो कहते हैं कि जाकर बोलो ये गांव के पीछे में जो नदी बह रहा है वहां दूध बहेगा तभी ये शादी होगा।
2: ये बड़ा कठिन है,
1: जो गांव के पीछे नदी बह रहा है उसमें दूध बहेगा तभी ये शादी होगा। लड़का को इस बात को सुन के वो बिल्कुल बस स्थिर हो गया, क्योंकि ऐसा बात तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि नदी में जो बह रहा है और जो गांव के पीछे में है जल से और उसमें दूध बहेगा तब शादी होगा। लड़का सोचते चलो खत्म, विवाह नहीं होगा, सभी तैयारियां कर चुके, अब बारात लौट रहा है। तभी किसी ने कहा कि अरे बारात तो लौट रहा है, क्यों नाना के मार रहे हो, नाना के तो गाड़ी के डिग्गी से निकालो। तो जा करके नाना को निकालते है, और नाना का निकालते है तो नाना पूछते है क्या हुआ भाई, तो लोग कहते हैं वहां पर कि बारात लौट रहे। नाना पूछे क्यों, उन्होंने कहा कि अब दुल्हन का पिता ने दूसरा शर्त रख दिया है कि जो गांव के पीछे नदी बह रहा है उसमें दूध बहेगा तभी शादी होगा,
0: उसमें दूध बहना चाहिए।
1: हाँ जी, नाना ने कहा कि इतना छोटे छोटे चीजों पे और ये बारात लौट रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नाना ने पूछा किसने ये संदेश लेकर आया, लोग दिखाए कि ये ही लेकर आए, तो नाना ने कहा कि इधर आओ, जा करके दुल्हन के पिता से कह दो कि दूध का व्यवस्था हो गया है, नदी खाली करा दो।
0: बस
1: यही चीज, दूध का व्यवस्था हो गया, नदी खाली करा दो। वो जाकर के व्यक्ति जाकर के दुल्हन के पिता को कहते हैं कि वहां किसी ने कहा कि दूध का व्यवस्था हो गया है, नदी खाली करा दो। लड़की का पिता ने कहा कि पक्का कोई बूढ़ा आया है बारात में। तो दोस्तों ये एक वृतांत हो जाता है कि हम सब सोचते हैं कि हम सब पढ़ लिख लिए हैं, हम सब अब जान गए, सब कुछ अब अपना पार हो जाएंगे, पर खास करके हम अपने पुरखों अपने बूढ़ों के साथ में जब नहीं लेकर जाते हैं ना। आजकल ऐसा होता है शांता जी कि हम लोग जैसे विवाह संस्कार कोई भी कार्य करे और जाकर के बातचीत करने को, तो हम सब सोचते हैं कि हाँ आजा, कौन जाएगा लेने के फॉर सॉर्किंग्स तो है इससे, और फिर पहुंचानी पड़ेगा, कौन जाएंगे विरधालय से लाने को और पहुंचाने के। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना, क्योंकि अभी हम सब के कहावत है कि महिमा हमारे पुरखों के है, तो हम सब उससे बहुत से सीखना है। राजेंद्र जी क्यों ना हम सब एक गीत की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों इस वृतांत के माध्यम से हम जरूर अपने पुरखों के और ध्यान दे, और उन्हें हर कार्यक्रम जो कोई भी कार्यक्रम अपना करे तो उसे लेकर के और साथ में करे। राजेंद्र जी कौन सा गीत पिटारा से आप निकालने वाले हैं?
0: मेरा आसमान है पापा,
1: तो चला देते हैं।

0: मेरा आसमान है पापा।
1: दोस्तों जैसे कि अभी आप सुने, एक बेटी अपने पिता के लिए कैसे सोचते हैं और पिता जो अपने बेटी के लिए कैसे सोचते हैं। शांता जी, इस पे आपको क्या कहना है, कुछ और संदेश रखना है या हम सब न्यूज की ओर बढ़ सकते हैं?
2: एक तो ये जरूर कहूंगी कि बेटी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर भी बेटियां कभी अधूरी नहीं होती। हर बेटी की पहचान होती है पिता, हर बेटी का अरमान होता है पिता, बेटियों के लिए पूरा आसमान होता है पिता। तो वैसे ही गीत हमने यहाँ हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से अभी आपके लिए पेश किया, तो बेटियों के लिए होता है आसमान पिता,
1: बेटियों के लिए होता है आसमान पिता। दोस्तों अभी जैसे कि आप सुन ही चुके हैं कि हम सब हमारे आज का विषय के ओर छलांग लगाना है, पर राजेंद्र जी जो इस समय कंप्यूटर पे लगा रहे हैं न्यूज कमर्शियल, और उसके बाद में हम सब जो आज का विषय है उस ओर बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ तक था हमारे कमर्शियल्स और जो हमारे न्यूज़ और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो इस समय हम सब यहाँ स्टूडियो में उपस्थित है, शांता जी, राजेंद्र जी और मैं भी, जो आपके साथ ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश इस समय जो रखा जा रहा है। तो राजेंद्र जी, जैसे कि पता है कि आज का विषय ब्राह्मण का महत्व, उसके बारे में हम सब कुछ बातचीत करने वाले हैं, तो क्यों

0: जाता है, ये तो भिखारी है।
1: भिखारी?
0: हाँ।
1: ऐसा
0: ऐसा अकबर बोला।
1: अकबर ने बीरबल से कहा?
0: ऐसा बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल से कहा
1: जी।
0: तो बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महान महल में चला गया तो बीरबल वापिस आया और ब्राह्मण से पूछा, वह भिक्षाटन क्यों करता है?
1: तो राजेंद्र जी, ये इस पे थोड़ा से हमारे सरनामी में कह दो कि भिक्षाटन मतलब क्या?
0: मतलब भीख मांगना।
1: ऐसा।
0: तो बीरबल वो पूछ ही रहा ब्राह्मण से कि
1: हाँ जी,
0: काहे का भीख मांगे?
1: एकदम
0: मंगा काहे रहे?
1: एकदम सरनामी,
0: एकदम सरनामी रहा। तो ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास धन पैसा आभूषण भूमि कुछ नहीं है और मैं ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, यानी मैं ज़्यादा पढ़े लिखल न रहा, इसलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षाटन मेरी मजबूरी है। इसलिए कहला के परिवार का जो पोषण भरण करे उसके लिए मेरे लिए भिक्षा मांगना जरूरी है।
1: अच्छा।
0: तो बीरबल ने पूछा, भिक्षाटन से दिन में कितना कमा लेते हो, प्राप्त हो जाता है? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, 6 से 8 असरफियाँ। उस समय असरफिया रहे रुपया जैसे रहा, तो उस समय असरफी रहा,
1: असरफी रहा,
0: असरफी, उसको असरफी बोले गिन्नी।
1: राजेंद्र जी, इस पे मैं कुछ और कहना चाहूँगा, क्योंकि असरफी जब ताजमहल बन रहा था ना, तो उसे भी असरफियों से भरा, यानी कि वर्कर्स के भरा जाता
0: था। उसी समय का बात है।
1: और एक होता कौड़ी,
0: कौड़ी तो और नीचे रहा,
1: और नीचे रहा, असरफी से नीचे,
0: असरफी तो उसके बाद कौड़ी रुपया चरन्ना दुवन्ना अटन्ना
1: ऐसे फिर आने लगा,
0: फिर 1 रुपया हुआ। अब 1 रुपया के नीचे कुछ ना चले, और जब जमाना बहुत ऊपर हो गया,
1: अब तो जमाना बदल गया,
0: 1 रुपये में कुछ ना मिले,
1: नहीं मिलता,
0: तो अब 10 रुपया 100 रुपया हो गया, तो धीरे धीरे 1 रुपये भी बंद हो जाएगा, लेकिन 1 रुपये अभी भी चले,
1: अभी भी चलता है वहाँ इंडिया।
0: हाँ, अभी तो चले, खूब चले। तो बीरबल ने कहा, आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या भिक्षा मांगना छोड़ देंगे? ब्राह्मण ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 गायत्री माला मंत्र का जाप करना होगा, और इसके लिए अच्छी प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 असरफियाँ प्राप्त होंगी। कि आपको केवल माला जप करना है और अच्छे वस्त्र पहनना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जो 6-7 असरफे मिलती है हम 10 असरफे देंगे आपको, और आपको केवल ये काम करना।
1: तो राजेंद्र जी, इस पे क्यों ना एक पिटारा से निकाला हुआ गीत सुना देते हैं?
0: जरूर।
2: हाँ, असरफी असरफी बोले है बताल में दल।
1: राजेंद्र जी, शांता जी का माइक ऑन नहीं है।
3: हाँ, असरफी आपने कहा रात कह रहे थे ना, तो असरफी जैसे हम जानते हैं आज के दौर में बताल मेदल, तो उस जमाने में असरफी था पहला। हाँ, हमने खोजबीन के लगाई, हम पकड़ अपन सुनने वालों को नहीं दिखा पाएंगे, पर हम यहाँ पे संजय जी को और राजेंद्र को तो मालूम है,
1: बस
3: ऐसे बताल मेदल।
1: ये गूगल बाबा भी कमाल करता है राजेंद्र जी, बस दबाओ बटन और गूगल से निकाल लो
0: बस।
1: दोस्तों, जैसे कि अभी हम सब आज के कार्यक्रम में कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर आए, तो आशा यही रखते हैं हम सब कि वही गीतों को चलाया जाए।

0: बरदे बीणा वादिनी बरदी,
1: जो सरस्वती का बीणा वादिनी बरदी जो भजन आपने सुना, बहुत ही अच्छा मनमोहक भजन रहा। तो क्यों ना हम ब्राह्मण की बात पे आगे बढ़ा दिया जाए।
2: अच्छा, ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्यों?
1: हाँ, और ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो जिसपे जिसके अंदर ज्ञान हो वही ब्राह्मण है।
2: उतना दूर नहीं पहुंचा ये ना, अभी धीरे धीरे चल रहा,
1: धीरे धीरे चल रहा है।
2: तो दोस्तों आप सुनते रहना, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी लोग और ऐसा ऐसा बात बोलते रहते हैं कि ब्राह्मण क्या है और उसके अंतर्गत में कभी ऊंचा नीचा हो जाता है, पर इसमें एक विशेषता है और जो हम सब लेकर आपके साथ और बांट रहे हैं। तो देखते हैं राजेंद्र जी, आगे का वृतांत में क्या कहा गया।
1: हाँ, तक आगे के वृतांत में कहा गया है कि अब तो गायत्री मंत्र की ये बात ब्राह्मण मान गए और उन्होंने स्वीकार कर ली। तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ये बात एकदम फिट बैठ गई। बीरबल का जो प्रस्ताव रहा, अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षाटन करना बंद कर दिया, भिक्षा मांगना बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया और शाम को 10 सर्पियां भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौट आता। सरनामी में चाहे हमें समझाए
2: नहीं, सरनामी में, क्योंकि आपके सरनामी जो, क्योंकि हम लोगों ने तो कोशिश करते इंडिया में जा कर के और हिंदी कोशिश किया जाता है बात करने को।
1: हाँ।
2: पर वहाँ ज्यादा नहीं बात कर पाते, पर आप जब सरनामी में समझाते हैं ना तो मजा कुछ और हो जाता है।
1: हाँ, तो अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षाटन जो भिक्षा लेते थे वो बंद कर दिए और फिर वो अपने पूजा जो गायत्री मंत्र है वो उसमें लग गया। और जब गायत्री मंत्र में लगे तो ब्राह्मण का ध्यान आकर्षित होने लगा। दर्शनाभिलाषी उसके दर्शन करके मिठाई दर्शन उसका जो दर्शन करे तो लोगों को मिठाई फल पैसा कपड़ा चढ़ाने लगे ब्राह्मण को। अब तो उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली असर्पियाँ का भी आवश्यकता न रही। तो जो 10 असर्पियाँ मिलती थी उसने बोला उसकी भी जरूरत नहीं, लोग उसका दर्शन के लिए ऐसे ही आने लग गए क्योंकि वो गायत्री मंत्र का जाप का प्रभाव रहा।
2: हाँ।
1: यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण का श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं को भी कोई आकर्षक ना रहा, बस वह सदैव मन से गायत्री जाप में लीन रह गया और गायत्री मंत्र की